0: मैं यू गई और यू आई।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना
15: दूल्हे
14: को टाटा
15: बाय बाय कर। अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
18: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.

नेशन के फन स्टेशन फनिशा रेडियो पर आप सब लोगों का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू द फनिशा नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनिशियाज नेटवर्क। एवरी संडे की शाम 6 से 8 दोस्तों रहता है आपका और मेरा साथ। मैं बोली तो आपकी अपनी अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम सानी। आज की शाम में हमारे शो में गाने चल रहे हैं एकदम हाई बीट हाई एनर्जी वाले, तो चलिए विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले हाई एनर्जी गाने की तरफ।

0: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावटी
1: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

3-2 से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर पे पिक्चराइज थी ये मूवी। हाई एनर्जी हाई नंबर चल रहे हैं यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर। दिस इज योर शो जिसका नाम है ये ईशा मस्तानी और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अपूर्वा। अगले हाई पिच और हाई नंबर गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी for the future. You can call them. The number to call is 469-942-9888 or you can visit their website which is agfintax.com. Back to the 90s. Arre wow.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
8: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 7:33, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। आज के हमारे शो में हम गाने सुन रहे हैं टोटल हाई एनर्जी वाले, हाई बीच वाले। तो अगर आपको भी आपका कोई गाना ऐसा रिक्वेस्ट या डेडिकेट करना है किसी को तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। वैसे मेरे गाने तो लाइंड अप हो चुके हैं, बट अगर कोई आपकी रिक्वेस्ट है तो एक दूसरा गाना मैं स्क्वीज़ इन कर सकती हूँ विद। चलिए बढ़े इस हाई एनर्जी हाई बीट गाने की तरफ।

All right. Matangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson. अगर इंडियाज माइकल जैक्सन की बात करें तो आपको तो पता चलना ही चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन प्रभु देवा, हु इज गोइंग टू कम लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदुरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी नीला कंतन, Natasha Sherpa and Sanvi Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. It is going to happen on Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. For more details, you can call the number. The number to call is 248-233-3828 and the media partner is Fun Asia Network.

ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:50. यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। This is your host Arjay Purva signing off for tonight. Have a great night ahead, Dallas, and have a beautiful Monday morning and the rest of the week ahead. Bye bye and good night.

0: हेलो एंड वेलकम द सिंगरो, मैं हूँ पारो। एक हमारे कोई जनाब हैं या मोहतरमा है जो कॉल करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, एंड आई वांट टू से प्लीज़ कॉल अस। हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया व्हेन आई पिक्ड अप, या फिर आपने कुछ वहाँ से नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं आई, बट यू कैन कॉल बैक 972-355-5555। लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट नाउ। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
1: Yeah, I was the one trying to call.
0: Yes, finally we connected. Earlier there was no sound. So, go ahead. How can I help you? This is Paro on this side.
1: Okay, can you play two cheese buddy and must?
0: Two cheese buddy and must, must. Mujhe laga aap bolenge. Please play Kya Ada Kya Jalve Tere Paro. Naam kya hai aapka?
1: Raju.
0: राजू जी, बिल्कुल जी, आप के लिए लगाती हूँ मैं। और नया वाला, राइट, द न्यू वन,
1: क्लासिक 90s का।
0: ओके, ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल पसंद है आपको, जरूर लगाती हूँ राजू साहब आपके लिए। थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: एंड आई लव दैट, क्योंकि जैसे ही हमारा शो शुरू हुआ हमारे पास आनी शुरू हो गई है रिक्वेस्ट। एक ना मैं सोच कर लाई थी आप लोगों के लिए, और क्यों सोच कर लाई थी वो बताऊंगी थोड़ी देर में। और वैसे मैं ये बता देती हूँ रीजन क्या है, क्योंकि आई थिंक आई कैन नॉट कंटेन माई सेल्फ, ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वेल, आई होप यू ऑल एंजॉयड द फाइनल्स, फीफा फाइनल। वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि आई नो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे, एंड वी want to talk about the entire season, jo FIFA ke itne sare matches hue and all that, and bahut sari baatein hain. We're going to talk in a little bit, but yes, I will be playing your request as long as it is after 90s and it fits our mood. Yani ki bahut slow, bahut sad, purane gaane hum nahi chalayenge, kyunki we are in a great mood and we want to sustain that.

If you have a song in mind, जो आप सुनना चाहते हैं, रहूंगी मैं आप लोगों के साथ 10 बजे तक. ये वक्त इस वक्त मेरा नहीं है, यानी कि इस वक्त नहीं है, लेकिन हुआ करता था. इफ सम ऑफ माई ओल्ड टाइमर लिसनर्स जो पहले से मुझे सुनते आ रहे हैं वो जानते होंगे. और इनफैक्ट अभी रिसेंटली आई मेट अ फ्यू पीपल एंड दे वर लाइक, अच्छा संडे को पारो तुम रात को शो करती हो, शाम को? एंड आई सेड नहीं, दैट वॉज लास्ट ईयर, और एक साल से ऊपर हो गया व्हेन आई यूज्ड टू कम एट दिस टाइम. सो इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम, क्योंकि संडे 8 से 10 बहुत, आई थिंक 2-3 साल आई हैव डन द शो, सो संडे इवनिंग इज वेरी स्पेशल टू मी. लेकिन इस वक्त मैं किसी को कवर कर रही हूँ एंड आई विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट फीफा वर्ल्ड कप. तो शुरुआत करते हैं. जैसे मैंने कहा था फ्राइडे को आई विल बी डूइंग माई स्पेशल सेगमेंट ऑफ बातें सितारों की, जो मेरा सिग्नेचर शो रहा है बहुत सालों से. बट हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप? इतना ज्यादा जबरदस्त एनर्जी के साथ ये गेम्स चले हैं एंड वी ऑल हैव बीन, वेदर यू आर अ फुटबॉल फैन और नॉट, यू हैव बीन, आई एम प्रीटी श्योर हैव बीन अफेक्टेड बाय इट, लिसन टू इट. शायद आपको जबरदस्ती लोगों ने सुनाया होगा काम पर, वर्क पे, या फिर एल्सवेयर, कहीं ग्रोसरी की लाइन में खड़े हुए आपने सुना होगा. बिकॉज दिस is everywhere, this is a game that and this is an event, I would say definitely the game but also the event. ye jo har 4 saal mein aata hai jab bahut sare desh, bahut sare cultures ikhatte ho jate hain, and this is such a beautiful moment of unity in the universe. bahut sari positive vibes hoti hain. ha thoda sa bura lagta hai jo log haar jate hain unko, but in the end everybody has their share of winning. especially agar Argentina ki baat kare, aaj haar gaye lekin bahut bahut जीते हैं वो पहले भी और इस टूर्नामेंट में भी. लेकिन अब मैं बताना चाहती हूं प्रभु देवा के बारे में, क्योंकि वो आने वाले हैं डैलस में. और प्रभु देवा जी आते हैं तो 90s के, देखिए 90s के गाने से शुरुआत हुई, राजू जी ने रिक्वेस्ट करी. लेकिन प्रभु देवा तो खैर 90s के टाइम से बहुत सारे उनके हिंदी गाने चल रहे हैं और साउथ के तो बहुत फेमस स्टार डांसर रह चुके हैं. लेकिन हिंदी में उनका प्रवेश या बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका प्रवेश या फेमस कह सकते हैं बहुत ज्यादा 90s में हुए थे. So let me take you back to the Prabhu Deva's song from the 1990s. If you have a song in mind again, number to the studio is 972-355-5555. And chuki FIFA ka fever abhi bhi chal raha hai, I have a question for you all. Yes, ye koi giveaway nahi hai, giveaway thodi der mein aayega. But my question is, which game aaj ka ho sakta hai, kabhi koi aur ho sakta hai, which game was your favorite? It can be एक महीने पुराना, इट कैन बी कल का गेम हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है. कौन सा है जो गेम आपको पसंद आया दो कंट्रीज के बीच में, आज का भी हो सकता है.

0: मुझे लगता है कि स्पेन का मंत्र आज अगर इस गाने की बात सोचें और इस गाने की बात पर लागू करें या इसकी फिलॉसफी अपनाएं तो स्पेन का आज मंत्र यही रहा होगा, टेक इट ईजी पॉलिसी. क्योंकि ये कह रहे हैं कि जीत का मंत्र है टेक इट ईजी पॉलिसी. वेल, स्पेन इज द विनर एंड व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल सीरीज ऑफ मैचेस देयर हैव बीन. और बहुत इंस्पायरिंग रहा है और आज का गेम भी जिसकी हम करेंगे थोड़ी देर में बात. बताना चाहती हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है दैट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीफा फीवर, व्हिच मींस दैट यू कैन टेल एनी गेम दैट यू लाइक, इट कैन बी बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन दिस सीजन. ये फीफा के टूर्नामेंट में आपको कौन सा गेम पसंद आया, कौन से दो टीम्स के साथ सबसे ज्यादा आपको मजा आया, और अगर आपको टाइम ट्रैवल करके बोला जाए कि आप कहीं ज्यादा दूर पीछे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे बन जाए अगर टाइम ट्रैवल करके, नहीं नहीं, ऑल यू कैन डू इज यू कैन गो बैक टू वॉचिंग दैट पर्टिकुलर मैच लाइव. आपको टिकट भी दे दिया जाएगा और आपको जाके बस वो मैच देखना है. तो कौन सा मैच है जो आप फिर से एक बार देखना चाहेंगे, वो भी लाइव बैठकर इन द स्टेडियम. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू नो एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दैट बिकॉज द फैक्ट इज दैट देयर आर सो मेनी वंडरफुल मैचेस. यस, फाइनल पर ही सबकी नजर गड़ी होती है, विनर एक ही होता है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट लॉट ऑफ वंडरफुल रेजिलियंस एंड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ऑल दैट वी हैव सीन इन सो मेनी मैचेस एंड सो मेनी टीम्स इंक्लूडिंग द यूएस. हमारी यूएस भी थी भाई. एंड विद दैट, प्रभु दैवा साहब का गाना है तो बताना पड़ेगा, आपको बताना ही चाहिए बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दिस इवेंट. इफ यू आर अ फैन ऑफ प्रभु देवा, व्हिच आई नो मेनी ऑफ यू आर, यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस दैट. मथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव टू DFW. जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलीब, सोनल भदूरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिणी निकंतन, नीलाकंतन, नताशा शर्पा एंड सानवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. दिस इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड परेरी. कैसे आपको टिकट मिल सकते हैं, आपको नंबर कॉल करना है, नंबर आप नोट कर लीजिए, ड्राइव करें नहीं नोट कर सकते, यू कैन कॉल मी एंड आई विल टेल यू. पारो इन द हाउस 248-233-3828, मीडिया पार्टनर योर्स ट्रूली फनेशिया नेटवर्क. एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यू कैन ऑलवेज गो टू अवर फनेशिया नेटवर्क का जो हमारा सोशल मीडिया पेज है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का. इट्स वेरी इजी टू बुक टिकट्स क्योंकि पिंट पोस्ट है ये, सो यू कैन वेरी इजीली बुक द टिकट्स राइट देयर. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: Hi, you just asked question which game we want to go watch.
0: Yeah,
1: stadium.
0: Yes.
1: My son is saying he wants to watch Argentina versus Egypt.
0: आई हर्ड एक्चुअली दैट गेम. मैंने नहीं देखा है, शायद मैंने हाईलाइट्स देखे होंगे, बट आई हैव हर्ड, आज ही किसी ने बोला कि दैट वाज अ वेरी गुड गेम.
1: सो ही वांट्स टू वॉच दैट वन.
0: दैट्स अमेजिंग. एंड मे बी इन 4 years ही विल गेट टू वॉच दैट गेम इन लाइव, राइट? क्योंकि 4 साल में फिर से होगा. यस,
1: होपफुली.
0: यस, आपके बेटे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं या आप कौन सा सुनना चाहती हैं, हम कर देंगे उन्हें डेडिकेट.
1: Anything new song?
0: Any new song? Of course, I will play that. What's your name?
1: Amital.
0: Amital?
1: Yeah, Mittal.
0: Mittal. Okay, sure, Mittal. Bye.
1: Thank you. Bye.
0: चलिए, एक रिक्वेस्ट मेरे पास पहले से आई हुई थी, सो लेट मी प्ले दैट. दिस इज चलिया.

जो हमारे मित्र अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे लिसनर दोस्तों यारो मैं हूं पारो एंड आई वांट टू टेल यू दैट द फीफा फीवर इज ऑन दैट मीन्स इफ यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड यानी कि अभी तक आपने अगर नहीं कॉल करके बताया क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऑलरेडी कॉल करके बता चुके हैं विच इज देयर फेवरेट गेम ऑफ द सीजन एंड अगर आपको एक जादू की छड़ी दी जाए जिससे आप टाइम ट्रैवल करके वापस चले जाएं जब वो गेम प्ले हो रहा है शुरू नहीं हुआ है बस होने वाला है और आपको जो बिल्कुल फ्रंट सीट दे दी है आपकी फेवरेट टीम की जर्सी के साथ तो वो कौन सा गेम होगा विच यू एक्चुअली वॉन्ट टू रिविजिट लाइव एंड दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट 972355555 है स्टूडियो का नंबर. मित्तल जिन्होंने अभी कॉल किया कहा कोई नया गाना चला दें तो मैं आपके लिए चला देती हूँ थोड़ा पुराना पुराना मीन्स थोड़ा सा रीपैक पैकेज होके ये नया गाना आया है वैसे वो भी नया था ये और ज्यादा नया है एंड विद दैट वी विल बी हेडिंग इनटू शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. लौटेगी यहीं पारो एंड फीवा फीफा फीवर व्हाट अ टंग ट्विस्टर इज ऑन.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: This week, every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen. Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week. Plus, 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99. And 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99. So grab your squad, grab your table, and don't miss the final kick. Fun Pizza Kitchen Frisco. Offer valid till 19 July only.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
4: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
5: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
4: सच में सब संभालेंगे
5: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.

0: वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो। 8 बजे से चल रही है हमारी ये प्यारी सी गाड़ी संडे इवनिंग की, और रहूंगी आप लोगों के साथ 10 बजे तक। दिस इज द सेगमेंट डेडिकेटेड टू द वंडरफुल सीजन ऑफ फीफा विच कल्मिनेटेड टुडे विद द हिस्टोरिक विन ऑफ वन फाइनल गोल बाय स्पेन। जी हाँ, एक ही गोल से उड़ा दिया स्पेन ने पूरा एक इतिहास बना दिया। एंड आई वांट टू से दिस फॉर दोज हु आर वाचिंग, क्योंकि आप हमें एक फैन टीवी ऐप पर या फिर funisha.net पर हमें देख भी सकते हैं। दोज हु आर वाचिंग बिकॉज वी आर ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म वुड सी दैट आई एम वियरिंग अ लरोहा, यानी कि अ रेड, टू कमेमोरेट द वंडरफुल गेम दैट वॉज प्लेड टूडे एंड टू सेलिब्रेट स्पेन्स विन। और मैं ये कहना चाहती हूँ, लरोहा हासे हिस्टोरिया उना वेज मास, लरोहा यानी कि रेड मेक्स हिस्ट्री once again. So yes, we are all very excited about this. So these wonderful games. और थोड़ी देर पहले ऑन एयर हमारे एक मित्र ने बोला, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर चुके, लेकिन जो हमारे एक मित्र ने बोला कि अर्जेंटीना, उनके बेटे को अर्जेंटीना और इजिप्ट का गेम, एंड जस्ट टूडे somebody mentioned this to me कि वो गेम बहुत अच्छा था। So yes, if you have a game that you want to go back to and you want to watch it, we can take a few more calls. 9 बजे तक हमारा ये segment चलेगा। और देखिए, बॉलीवुड तो हमारा बॉलीवुड और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज हैव बीन सेलिब्रेटिंग स्पेन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम।
1: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer.
2: نہ میں سمجھا نہ میں جانا، جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا۔

यही जरूरी होता है कि जिंदगी में हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड दीज सेटबैक्स डू नॉट रियली पुश अस बैक. जैसे कि आज के गेम के बाद कुछ लोग दुखी हैं, दे आर टेलिंग दैट अर्जेंटीना को वो सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें दुख हुआ जब अर्जेंटीना नहीं जीती, या फिर मेसी को के ऊपर जब कैमरा शाइन हुआ, सो लॉट ऑफ पीपल बिकेम इमोशनल बिकॉज वेल कोई भी टीम जीते, द फैक्ट इज द नंबर वन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फेम एंड करंट स्टेटस, मैं ऑल टाइम की बात नहीं कर रही हूं, मैं आज जो इस वक्त खेल रहे हैं, जो करंटली प्ले कर रहे हैं और जिनका जो इंपैक्ट है वर्ल्ड वाइड, फुटबॉल प्लेयर, सॉकर प्लेयर, एंड उसमें नंबर वन इज लियोनेल मेसी. जी हाँ, रोनाल्डो आते हैं नंबर टू पे और उसके बाद बहुत सारे हैं. यस, मोहम्मद सलाह इज हैरी केन, लॉट ऑफ यू नो हलांड, लॉट ऑफ आर देयर, बट यस मेसी इज नंबर वन एंड दैट इज द इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग thing that we should always remember about Argentina.

ओ मन्नू, व्हेनेवर आई लिसन टू सॉन्ग, इतने प्यारे क्यूट शाहरुख खान बच्चे से लग रहे हैं. इसमें एज अलग है लेकिन जो लग रहे हैं वो बिल्कुल मन्नू लग रहे हैं. एंड विद दैट लेट्स गो टू अवर लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि द फीफा सेगमेंट, एंड वी विल बी बैक विद अ डिफरेंट सेगमेंट, यानी कि उस पार 9 बजे के बाद. सो यस, आई एम गोना स्टे विद यू अंटिल 10 PM एंड वी आर गोना टॉक अबाउट समथिंग एल्स. बट इफ यू डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट फीफा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद मौका नहीं मिला होगा शेयर करने का उनकी उनके फेवरेट गेम के बारे में बताने का. सो इफ यू हैव अ फेवरेट गेम विच कुड बी टूडेज और सम अदर, यू कैन स्टिल कॉल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस विद एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. वी ऑलवेज वेलकम दैट. बट वी विल बी मूविंग टू अनदर सेगमेंट. 9723555555 है स्टूडियो का नंबर. पारो इन द हाउस.

0: to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, because miracles happen in Mirage.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, jagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
11: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

वेलकम बैक दोस्तों. यारों मैं हूँ पारो. दिस इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि 9 से 10. और इस वक्त वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग 2.5 आवर वी आर गोइंग टू डू माय सिग्नेचर शो बातें सितारों की ऑन पॉपुलर डिमांड बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड एंड सो इट इज़ बैक. दिस इज समथिंग दैट आई इज़ वेरी क्लोज टू मी क्योंकि देखिए चाहे फीफा का गेम हो या गेम्स हों या फिर इस स्पोर्ट्स के हों, बॉलीवुड की फिल्में हों, एनीथिंग दैट वेदर इट्स with our work or our passion or our hobby or anything that we, whether it's sports, creative fields, anything, it is true that there are a lot of players. And players, agar main baat kar rahi hu to main sirf sports ki baat nahi kar rahi hu, but I'm also talking about players in different fields, yani ki jo bahut sare creative artists hain. Lot of people have inspired us and continue to inspire us. Aur baatein sitaron ki उन्हीं सितारों के लिए है, उन्हीं इंस्पायरिंग स्टार्स के लिए है जो हमेशा हमें आसमान से नहीं इस धरती से गाइड करते हैं. आसमान के सितारे तो बहुत दूर हैं, उन पर पहुंचने के लिए तो बहुत सारे लाइट ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन ये जो सितारे हैं कई बार बहुत हमारे करीब होते हैं, हमारे शहरों में भी होते हैं एंड नहीं होते तो आ जाते हैं. बिकॉज पनिश आप लोगों के लिए शोज लाता रहता है ताकि जो आपके सितारे बहुत दूर कहीं मुंबई में हैं वो आपके करीब आ जाएं. सो यस, यू हैव सीन सम ऑफ देम इन लाइव शोज. इट्स वेरी inspiring to learn about that story and this is what Baatein Sitaron Ki is about. July mein ek janamdin aata hai, ek singer aur musician hai jo composer bhi hai aur unka janamdin aata hai aur let's listen to his song. Naam nahi bataungi, jaise hi aap unka gana sunenge aap samajh jayenge kaun hai ye janab jinhone bahut sare gaanon se aur apni interesting life se, humble beginning se utkar aaye hain, usse hame bahut bahut zyada प्रभावित किया है.

जी हाँ, कैलाश खेर को ही हम डेडिकेट कर रहे हैं बातें सितारों की का ये सेगमेंट। एंड जन्मदिन उनका कुछ दिन पहले निकला है, बस मेरे से थोड़े दिन पहले ही। 9th जुलाई को मेरा जन्मदिन आता है, 7th जुलाई को कैलाश जी का जन्मदिन आता है। 53 ईयर्स के हो गए हैं और ये भी हमारी दिल्ली के ही एरिया के हैं। सो आई एम ऑल्सो ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट दिल्ली एंड ये भी वहाँ पर जो एक एरिया है मयूर विहार, उसके पास में एक विलेज है ईस्ट दिल्ली, यानी कि जो यू नो ईस्टर्न पार्ट, जमुना के उस पार बोलते हैं, यमुना पार, तो वहाँ की वहाँ को बिलोंग करते हैं। वैसे ही इज़ एक्चुअली कश्मीरी ओरिजिनली, बट वहाँ दिल्ली में सेटल हो गई उनकी फैमिली, लेकिन काफ़ी हम्बल बिगिनिंग से निकले हैं एंड अ लॉट ऑफ टाइम ही हैज़ स्पेंड इन उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ इंडिया में। लेकिन म्यूज़िक का शौक उन्हें बहुत यंग एज से था और बहुत यंग एज पे वो 14 ईयर्स पे ही घर छोड़कर चले गए, बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम टू लर्न म्यूज़िक। 14 साल पे इतना विजडम, इतनी अंडरस्टैंडिंग दैट इसमें बहुत लगन चाहिए और परिवार से अलग होके मेहनत करके आई कैन डू दैट, दैट इज़ वॉट ही बिलीव्ड एंड आई फाइंड दैट वेरी अमेजिंग। यस, ये भी होता है कि आप हो सकता है कुछ यू नो यंग एज है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती, बट आई थिंक ही वॉज वेरी मिच्योर फॉर हिज एज, यू कैन से दैट। क्लासिकल और फोक म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए वो चले गए एंड ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बोथ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वो फोक म्यूजिक यूज़ भी करते हैं अपनी सिंगिंग में, अपने म्यूजिक में। सो यस, ही हैज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू म्यूजिक। स्ट्रगल की बात करेंगे उनकी, बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है, बट लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स। कैलाश खेर साहब का कोई गाना सुनना चाहते हैं, यू कैन कॉल, थोड़ी देर में एक गिव अवे भी आने वाला है। फिलहाल बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तारा कमर्शियल एनर्जी, अटेंशन टेक्सस बिजनेस ओनर्स। जी हाँ, ये स्पेशली हमारे टेक्सस के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ये खबर है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, Trust Tara Commercial Energy. They proudly serve Texas businesses and they have been serving since 2002 actually. Jiya 22 nahi 2002, yani ki ye samajh sakte hain aap kitne saal ho gaye, ye yahan pe mera mathematics use hoga, but 24 years, yes, almost silver jubilee hone wali hai unki. So he has been this company has been working with you all Texas business people and those who have not availed their services, well, I will tell you how you can do that. And they have been providing competitive rates, reliable service and customized energy plans. Kya karna hai aapko? You have to call 844-428-2808 or you can visit taraenergy.com today. Aur agar aap Paro ke saath connect karna chahte hain, to Princess Paro 27 is my Insta account and Paro Kaushik is my Facebook account. Us par aap message kar sakte hain and also call us 972-355-5555, especially if you have something interesting to share about Kailash Kher ji or if you want to listen to one of his songs.

0: आएगा।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कैलाश खेर साहब अपने एक यंगर सेल्फ के लिए गा रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन में गए हैं और उसके बाद उभर कर आए हैं। सो यस, दैट इज़ समथिंग टू रिमेंबर। जब ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ कैलाश खेर की साहब की ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, मुझे ये लगता है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा दलदल में फंसे होते हैं, जितना निकलने की कोशिश करते हैं और नीचे धसते जाते हैं, और उस वक्त ऐसा ही लगता है दैट देर इज नो एंड, देर इज नो वे वी कैन राइज। लेकिन अगर ये आप याद रखें, इस गाने को बार बार सुनें और ये याद रखें कि कल जो भी हो फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, चाहे टूट गया कोई बात नहीं कि फिर उड़ ना पाया। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि दैट्स इट, देर इज नथिंग, वी विल नेवर बी एबल टू फ्लाई अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू अचीव आवर ड्रीम्स। और ऐसा कैलाश खेर जी को लगा जब उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, और पहले भी बहुत स्ट्रगल करते रहे वो, बट क्योंकि लर्न करने की कोशिश कर रहे थे म्यूजिक, हम्बल बिगनिंग से आए थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि जैसे होता ना पुल्ला वगैरह की मतलब नेपो या उस तरह का कि कोई है सर पर हाथ रखा हुआ है किसी ने, ऐसा नहीं था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। एंड उस वक्त उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ, एक फैमिली फ्रेंड के साथ एक एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया टू सस्टेन खर्चा, क्योंकि म्यूजिक से तो पैसे नहीं मिल रहे थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे, सीखने में भी उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लर्न, राइट? तो खुद से सीखते थे, खुद से कई कई बार गाने सुनते थे और सीखते थे। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
2: जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
1: मैं अच्छी, सुरैया जी आप कैसी हैं?
2: हम कार में हैं, तू जाने ना, आपने बजा दिया क्या?
1: तू जाने ना,
2: हाँ, प्रेम, अजब प्रेम की गजब कहानी।
1: अच्छा अच्छा, ये वाला सुनना चाहते हैं? हाँ, ये वैसे तो आतिफ असलम जी का है। अच्छा, कैलाश खेर का, ये तो आतिफ असलम का है।
2: अच्छा,
1: हाँ, तू जाने ना।
2: ओके ओके, इस पे कैलाश खेर लिखा हुआ था, तो आप देख रहे हैं,
1: मैं देखती हूँ, शायद उन्होंने भी हो सकता है गाया हो।
2: हाँ जी,
1: ये पर्टिकुलर तो हाँ शायद नहीं गाया, बट मैं हाँ आई थिंक सही कह रहे हैं आप, एक शायद कैलाश खेर जी का भी है।
2: जी
1: तो मैं चलाऊंगी। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, श्योर। जी हाँ, तो ये मैं बात कर रही थी, कैलाश खेर जी बहुत डिप्रेशन में चले गए, उनका बिजनेस ठप हो गया, एंड काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने उस टाइम में, कुछ ऑलमोस्ट कोई कई महीने ही स्ट्रगल विद इट, लेकिन फिर फैमिली के सपोर्ट से वो वापस दिल्ली आए, उन्होंने अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की। बहुत यंग एज में उन्होंने म्यूज़िक के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तो फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह भी ख़त्म करी, और फिर उसके बाद वो मुंबई आए, फिर उनका अलग स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मुंबई वाला स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर।
3: पारो जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
3: मैं रविशंकर बोल रहा हूँ।
1: रविशंकर जी, बहुत टाइम बाद बात हो रही है आपसे, कैसे हैं?
3: बस आपकी दुआ है मैम। आपने बोला फरमाइश, तो एक चांद सिफारिश जो गाना था, आई थिंक फना फिल्म का, अगर वो मौका मिले तो, ऐसा नहीं जिसका सबसे पहले फरमाइश हो, लेकिन अगर मौका मिले तो बताइएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपका इसके बाद आपका ही लगाती हूँ, सफी जी का, और फिर उसके बाद।
3: ठीक है मैम, थैंक यू।
1: चलिए सुनते हैं सुरैया जी ने और सफी ने जिन गाने की जिस गाने की रिक्वेस्ट करी है, एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट कैलाश खेर।

थोड़ा सा वक्त है, हम एक ब्रेक में जाने वाले हैं। बहुत प्यारा रूबी का मैसेज आया। रूबी, मैं आपका गाना ब्रेक से आने के बाद फौरन से चलाती हूँ और करेंगे कैलाश खेर जी की बात। 10 बजे तक है हमारा शो। एक कॉल भी आ रही है, बट आई एम गोइंग टू टेक इट ऑफ एयर बिकॉज मैं रविशंकर जी आपका गाना चलाना चाहती हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों. यारो मैं हूँ पारो. पहुँच गए हैं हम अपने फाइनल फोर्थ सेगमेंट पर, यानी कि वी आर गोइंग टू बी हेयर फॉर स्लाइटली लेस देन 30 मिनट्स. मतलब मैं यहाँ पर रहूँगी, आप तो जहाँ जा रहे हैं आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको पूरी छूट है. सिर्फ अपना जो गाड़ी का नॉब है वो 104.9 FM पर रखिएगा. बस इतनी सी गुजारिश है पारो की. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली वर्ड्स. बहुत सारे लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और आपकी जो प्यारी रिक्वेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं. सो रूबी ने मुझे थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट करी थी, एंड आई एम गोना प्ले योर सॉन्ग रूबी. आई वांट टू से दिस रूबी एंड आई गो लॉन्ग टाइम बैक, यानी कि बहुत सालों से मैं रूबी को जानती हूँ. लेकिन आई थिंक रेडियो पर आपकी रिक्वेस्ट मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद आई है, कुछ साल बाद, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. बट येस, दिस इज़ वॉट आई फाइंड सो एक्साइटिंग अबाउट रेडियो, कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे कई बार महीनों और कई बार सालों बात नहीं हो पाती है, बट वेन वी कनेक्ट ऑन रेडियो बहुत मुझे अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो एंड दीज सॉन्ग्स एंड दीज मेमोरीज, ये जो गानों की मेमोरीज हैं, दे आर शेयर्ड मेमोरीज हमारी. तो ये इससे हमारा कनेक्शन फिर से रिकिंडल हो जाता है. और डेफिनेटली देर आर अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड ऑन रेडियो, एंड सो आई एम रियली ब्लेस्ड आई से दैट टू बी अ पार्ट ऑफ फनेशिया. और यहां पर आप लोगों से बात कर सकती हूँ, आप लोगों के गाने सुन सकती हूँ, आप तक पहुंचा सकती हूँ. सो रूबी, दिस गोज टू यू. लगता है मेरा गाना जाने का नाम नहीं ले रहा था. कई बार ऐसा होता है, पारो का गाना जो है वो कई बार बार बार बजता रहता है. बट नो, दैट इज नॉट द सॉन्ग. दिस इज कैलाश खेर्स सेगमेंट, सो वी आर गोना टॉक अबाउट हिम एंड प्ले हिज सॉन्ग्स. यस रूबी, दिस इज द राइट सॉन्ग.

0: ये कैलाश खेर साहब की एल्बम झूमो रे से है. एंड जैसे मैं कह रही थी, मुंबई आ गए वो, एक बार वो बिजनेस का गड़बड़ हुआ, बहुत डिप्रेशन में चले गए. एंड दिस आई एम टॉकिंग लाइक एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, 99 में ये शुरुआत हुई. लेकिन उसके बाद वो फिर से उभर कर आए. ही ग्रेजुएटेड, उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई खत्म करी और फिर उसके बाद वो मुंबई आए. एंड दैट इज द स्पार्ट वेयर ही हैड हिज सेकेंड, ये मैं कहूंगी कि सेकेंड स्ट्रगल शुरू हुआ. क्योंकि मुंबई में आने के बाद काफ़ी उन्होंने कोशिश करी, छोटे मोटे काम करने की कोशिश करी. बहुत हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे और आपने बड़ी सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी फुटपाथ पे सोने की. द पॉइंट इज दैट द लॉट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस. और अगर आपको कोई जानता नहीं है, आप कितने भी अच्छे गायक हैं, कितने भी अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, लेकिन अगर आपको लोग जानते नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा. इसके लिए उन्होंने जिंगल्स बहुत गाए हैं और जिंगल्स से उन्हें पैसा मिलना शुरू हो गया. इनफैक्ट उनके जिंगल्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे. तो बहुत सारे ब्रांड्स उस टाइम पे, जो कोका कोला, सिटी बैंक, पेप्सी, बहुत सारे उस तरह के लिए उनके जिंगल्स वो गाया करते थे. और उससे उनको एक थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई और थोड़ा थोड़ा पैसा भी मिलना शुरू हुआ. अगला गाना मैं चलाती हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा. If you're involved in a car or truck accident, hopefully not, or a slip and fall incident, definitely not. लेकिन जिंदगी है, कभी कभी पांव फिसल जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है. If that happens, चाहे आपकी गलती हो, किसी और की गलती हो, लेकिन अगर कहीं भी इस तरह की कुछ एक्सीडेंट या स्लिप या इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं, you definitely need an attorney to be on your side. Attorney Omar Khwaja will fight your case and get you the help and the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies बहुत can be very stressful. This is a रियली काफी स्ट्रेसफुल होता है ये. सो यू नीड एन अटर्नी हु इज नॉलेजेबल एंड हु विल मेक श्योर दैट यू आर कंपनसेटेड. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप पे नहीं करते उनको जब तक आप जीतते नहीं है. फ्री कंसल्टेशन के लिए उनका नंबर नोट कर लीजिए, 4693005046, और विजिट attorneyomar.com. और वैसे तो हम 8 से 9 बहुत फीफा की बात कर चुके हैं, आपकी बहुत सारी मैं बातें सुन चुकी हूँ, कौन सी टीम्स आपको पसंद है, कौन से गेम्स आपको पसंद है. लेकिन जो उन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और जो नहीं थे हमारे साथ 8 से 9, नहीं सुन रहे थे, नहीं थे इस सफर में, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आई डू वॉन्ट से दैट फनिशिया कंग्रेचुलेट्स स्पेन फॉर अ हिस्टोरिक विन एंड दैट हिस्टोरिक गोल. मतलब एक गोल और दे बिकेम द विनर ऑफ फीफा 2026. एंड यस, I am wearing red to commemorate them. And you can connect with me on Paro Kaushik on Facebook and Princess Paro 27. Let's listen to this other song, jo bhi Kailash Kher ji ka hi hai.
1: क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है?
2: आज्ञा दो माँ.
1: क्या

बहुत बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड जर्नी रही है कैलाश जी की, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड इन मुंबई. ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं 25 साल हो गए उनको, लेकिन शुरू में काफ़ी, जैसे मैंने कहा, स्ट्रगल किया. लेकिन उनको जो थोड़ी देर पहले मैंने गाना चलाया था और उससे उनको, विच इज़, मैं सोच रही हूँ कौन सा गाना, क्योंकि मैं इतने सारे उनके गाने चला चुकी हूँ, बट अल्लाह के बंदे, यस, दैट वाज द वन, आई थिंक इट वाज द सेकंड सॉन्ग आई प्लेड ऑफ हिज, एंड फ्रॉम इन 2003, जो वैसा भी होता है, यू नो, दैट वाज द, फ्रॉम दैट ही हैड द सॉन्ग अल्लाह के बंदे, और इससे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई. दैट वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस सॉन्ग्स ऑफ दैट टाइम. और उसके पहले उन्होंने अंदाज, एक उसी साल में 2003 में ही एक फिल्म है अंदाज जो आई थी, उसके लिए भी उन्होंने गाना गाया था. सो ही इन द बिगिनिंग ऑफ 2000s, दो साल तीन साल स्ट्रगल करके, जिंगल्स बनाकर, ही गॉट हिज ब्रेक इनटू बॉलीवुड. लेकिन सबसे ज्यादा वो फेमस हुए जो गाना मैंने आपको बताया, विच इज अल्लाह के बंदे, एंड फॉर ऑब्वियसली वेरी वेरी बिग रीजन, बिकॉज दैट सॉन्ग इज सो पावरफुल एंड वेरी इमोशनल, एंड ही प्लेड इट सो वेल, ही सैंग इट सो वेल. लेकिन उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे गाने गाए, कुछ मैं चला चुकी हूँ उनकी एल्बम के, उनकी जो तेरी दीवानी उनकी एल्बम आई थी 2006 में, और उसमें उनका ये सूफी फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था. लेकिन उसके बाद बहुत सारी उन्हें फिल्में मिलने लगी, बिकॉज देन ही बिकेम एस्टैब्लिश. सो यू कुड से दैट मिड 2000s में, मिड फ्रॉम 2000 से लेकर 2010 के मिड्स में ही स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन, और फिर उनको मिली फिल्में जिसमें उनको कॉम्पोजर का काम भी मिला, नॉट जस्ट सिंगर बट कॉम्पोजर, और वहां से उनकी बहुत ज्यादा नाम होने लगा, बिकॉज सम रियली वंडरफुल म्यूजिक ही हैज क्रिएटेड, और वो मैं आप लोगों के लिए चलाने वाली हूं. लेकिन उससे जुड़ा हुआ है हमारा गिव अवे, और ये जो मैं गाना चलाने वाली हूं, ये मैं डेडिकेट करती हूं फरीदा जी को, क्योंकि वसीम जी ने थोड़ी देर पहले कॉल करके कहा था कि थोड़ी देर बाद चलाइएगा आप, 10 मिनट बाद. तो मैं फरीदा जी आपके लिए गाना चला रही हूं, आई होप आपको पसंद आए, बहुत प्यारा गाना है. एंड बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अवे रिलेटेड टू अ कैरेक्टर इन द सॉन्ग. कैलाश खेर जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका इसमें बॉलीवुड का कितना नॉलेज है आपको ये टेस्ट करना चाहती हूँ. लेकिन क्या है गिव अवे, पहले ये बता दूँ, इट इज एक्चुअली फन पिज्जा किचन से रिलेटेड. सो अगर इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन, वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, तो आप उनका अचारी पनीर पिज्जा ट्राई करिए, विच इज पैक्ड विद अ टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. और अगर आप मीट पसंद करते हैं, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज वेरी पॉपुलर, विच इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. तो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, हर किसी के लिए है एक पर्टिकुलर स्लाइस वेटिंग, एक से भी ज्यादा. बिल्कुल, कई बार मेरे पास लोग बोलते हैं एक ही स्लाइस, नहीं नहीं, आप तो पूरा पिज्जा खाइए फन पिज्जा किचन में, एक स्लाइस से कैसे रुकेंगे आप, बिकॉज इट is so tasty, and yes, there is always something waiting for you at Fun Pizza Kitchen. Details ke liye aap ja sakte hain funpizzakitchen.com. aur ab hai giveaway ki baat, it is your chance to win $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering ek simple sa sawal. Sawal ye hai ki ye jo main gana chalaungi, main aapko isme film ka naam nahi bataungi, gana jaise hi chalega aap samajh jayenge kaun hai film. ye badi famous film hai, gana bahut famous hai, and it's an off beat film keh sakte hain, it's not a very typical commercial film, lekin kafi ज़्यादा लोग इसके गाने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं ओवर द इयर्स, सो आई नो इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. और इसमें जो मेन एक्टर हैं, इनका एक छोटा भाई होता है जो बड़ा प्यारा होता है, इसमें छोटे भाई की एक्टिंग करता है वो, एंड दैट पर्सन हैज डन आल्सो वेरी आइकॉनिक एंड फेमस रोल इन धुरंधर एंड धुरंधर 2 दोनों फिल्मों में, यानी कि धुरंधर फ्रेंचाइजी में इन्होंने ये एक रोल किया है. उस कैरेक्टर का नाम क्या है, जैसे ही आप ये गाना चलेगा आप समझ जाएंगे कौन सी फिल्म है, और इस फिल्म के में छोटे भाई कौन है हीरो के, और वो छोटे भाई धुरंधर में किस किरदार को निभा रहे थे. आई थिंक इट्स कनेक्टिंग टू फिल्म्स. चलिए मैं ऐसा करती हूँ, इस फिल्म का नाम बता ही देती हूँ, क्या कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो. इस फिल्म का नाम है 10 विधानियाँ. 10 विधानियाँ में जो ये छोटे भाई होते हैं इस फिल्म में, और छोटे भाई ये कौन बने हैं धुरंधर में, कौन सा किरदार निभाया है, यू हैव टू टेल मी दैट टू विन $10 फ्रॉम फन पिज्जा किचन, एंड यू विल बी गोइंग टू फन पिज्जा किचन फ्रिस्को टू कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड. 9723555555 स्टूडियो का नंबर.

सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस इज, इसलिए मैंने इसे पूरा चलने दिया. बड़ा प्यारा सा गाना है, उसके वर्ड्स वक्त नहीं है हमारे पास, घड़ी में 9:55 हुए हैं, नहीं तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा इसके वर्ड्स के बारे में बताती. जब भी मैं मदर डे या कुछ भी इंटरनेशनल वुमेन डे, ऐसी कुछ भी मदर की बात होती है, तो ये गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारी आती हैं. 10 विधानियां पिक्चर भी बहुत अच्छी, अगर आपने नहीं देखी. एंड इट वॉज अ टेढ़ा क्वेश्चन मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारी, क्योंकि इसमें 2 फिल्में और वो भी एक डिफरेंट टाइम एरा की. 10 विधानियां एक जमाने में आई थी, और अभी धुरंधर और धुरंधर 2 तो बहुत रीसेंट फिल्म्स हैं, और इनको मैंने कंबाइन किया, और वो भी मैंने मेन एक्टर नहीं, एक साइड एक्टर से किया. तो मुझे ये लगा कि शायद थोड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन यस, लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड, सो थैंक यू सो मच गौरव गेरा. गौरव गेरा ने बहुत सारे सीरियल्स, टीवी सीरीज में, फिल्मों में काम किए हैं, कुछ बड़े रोल, कुछ छोटे रोल. इसमें छोटे भाई का काम करते हैं वो 10 विधानिया में, लेकिन उन्हें अच्छा बड़ा रोल, बड़ा मतलब वो भी साइड ही रोल है, लेकिन चूंकि धुरंधर इतनी बड़ी फिल्म बनी है, इसकी वजह से उनका रोल लोगों ने बहुत पसंद किया, मोहम्मद आलम का उन्होंने, और उसमें प्रोस्थेटिक्स लगा के, और बहुत डिफरेंट वो नजर आए हैं, तो बहुत ही अच्छे लगे हैं. सो यस, कैलाश खेर जी की तो और भी बहुत सारी बातें थी करने की. ही हैज डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स आफ्टर दैट, एंड वन अवार्ड्स. बहुत स्ट्रगल, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया, खुद से सीखा, खुद से लगन उनके अंदर थी म्यूजिक लर्न करने की और कुछ बनने की, एंड दैट इज वॉट ही डिड. वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड विद दैट वी विल कंटिन्यू अवर स्टोरीज एज वी ऑलवेज डू विद बातें सितारों की. अगले संडे नहीं शायद, लेकिन आई विल मीट यू प्रेटी सून अनदर टाइम. फिलहाल एक और गाना सुनते हैं. इस गाने से भी कैलाश खेर जी काफी नजर में आए. इट वॉज वन ऑफ हिज बिगनिंग एरा कॉरपोरेट फिल्म जो है उसका ये गाना है. एंड विद दैट, आरजे पारो साइनिंग ऑफ अगेन.

लेकिन आई विल मीट यू प्रीटी सून अनदर टाइम. फिलहाल एक और गाना सुनते हैं. इस गाने से भी कैलाश खेर जी काफी नजर में आए. इट वॉज वन ऑफ हिज बिगनिंग एरा कॉरपोरेट फिल्म जो है उसका ये गाना है. एंड विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ अगेन. वेरी वेरी congratulations to Spain to winning FIFA 2026 from RJ Paro and the entire team of Fun Asia.

0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Get your body moving and your heart pumping with the hottest dance tracks on your airwaves.
2: Turn it up.
1: Brought

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

0: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500 The Jago Times Commission Jago Bhi Jagao Bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: This week every football fan scores big at Fun Pizza Kitchen Celebrate football's biggest night at Fun Pizza Kitchen Frisco with 50% off on all adult beverages all week plus 10 wings and 2 adult beverages for just $14.99 and 5 wings plus 1 adult beverage for only $9.99 So grab your squad grab your table and don't miss the final kick Fun Pizza Kitchen Frisco offer valid till 19 July only
2: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
3: The night away with Club Phonasia.
4: I love it.
3: The ultimate celebration of music and rhythm.

ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
5: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
4: नहीं
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है
4: नहीं
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
4: वो भी नहीं
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.9 FM.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का टैग, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
4: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: दिल हंसते हंसते रो पड़ा
2: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती आई एम सॉरी

0: टू चाइना।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
2: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
3: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
1: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

डालस की धड़कन 104.9 FM फनी या रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: the magic 24/7, only on 104.9 FM.
1: He's got very little time.

0: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.
1: Cute.

0: Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.
1: आ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनी पाजी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तां बड़ा सही है, इत्थे तां पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी, उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल हो गए, दादी नू मिलन आया सी एक वारी।
2: पाजी, तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: दूर लगता है तू पैग लाए हो या?
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, इक्की बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है। पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा, मेरी
1: फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: proven experts.
1: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA loan experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
2: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Dawn ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna? उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
4: विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस.com और कॉल 214-666-6262.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
2: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the show and let's get this week started for you. It's Monday, the 20th of July. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chaand sitare banai, zameen aasmaan banai. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, aur ye saari kainat ko, insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम या अली मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम
4: शिवांशी का भक्ति
3: नंबर इन द स्टूडियोज 972-235-5555

0: आवाज अच्छी है, बस थोड़ा नमक कम है। और राग में नमक लाने के लिए नमकीन जिंदगी जीनी पड़ती है।
1: और नमक ज्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है जिंदगी। मैं आपसे संगीत सीखने आई हूं।
0: हमारे यहां संगीत को गाना कहते हैं।
1: गाना सिखाने की जो कीमत हो मंजूर है।
0: हमारी कला इतनी अजीम है कि उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप शादीशुदा हैं। हमारा तजुर्बा है कि एक बार जो उस आग के चक्कर काट लेता है उसके अंदर की आग हमेशा के लिए बुझ जाती है।
1: उसी बुझी हुई आग को फिर से जगाने आई हूं। मुझे यहां से नाउम्मीद ना लौटाइए।
2: रूप, शाम हो रही है, हमें चलना चाहिए।
0: आप चौधरी के यहां काम करती हैं?
2: जी।
0: आपके घर पे पता है कि आप हमसे मिलने आई हैं?
1: जी पता है,
0: कल आइएगा। आपकी आवाज फिर से सुन लूंगी और अगर दोबारा पसंद आए।
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
4: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me. It's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
12: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
12: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
12: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
16: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
16: ये क्या होता?
14: सिंपल,
15: Chandigarh Bites Express in Allen.
17: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
18: And now at a bigger location, just three doors down, with limited reservation available.
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Hey, thank you, किसके लिए? I hope you're not too sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born insomniac.
0: हाँ.
1: Sleeping pills बिना सोना impossible. But really, Akshay, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं.

0: तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
1: तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.
10: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning as we get this week started for you. It's Monday, the 20th of July. We'll get you caught up and make sure you're completely informed as well as entertained.

0: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
1: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
2: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी @9797972654 और विजिट astroramji.com।

0: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao. And you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
9: Thank you very much for joining us in this final hour of our program. And if it is right now that you're joining, we'll get you caught up and have the world news coming up for you in the 9:30 segment. I have a giveaway coming up for you. We'll tell you about stuff that's happening around town. All that, all headed your way.

0: Mohit Chauhan sang this track for the movie New York, and the first one to give me the right answer was Sunny Singh, and he gets $10 off in his next billing of $50 when he dines in at the Chandigarh Bites. So do stop by there and taste the food there. It's Chandigarh Bites. So thank you very much for all your calls, and we will have plenty more information all coming up for you right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Today is Monday, the 20th of July, and as we get this week started for you, it's going to be a very hot week, the hottest week so far this summer. 101 a little later today with a heat index of 105. We are going to be under a heat advisory as we start this whole week of triple digit temperatures, and the heat advisories may continue into the weekend. Of course, we'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Stay with me. We'll have you completely informed and entertained.
1: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ?
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
10: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you, so call KJ Kamna Ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai, and 926-641.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। Your growth, our strategy.
15: AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Financial Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with me too. आप लोगों के साथ 12:30 बजे तक हूँ, लेकिन अब तक शबनम जी आपके साथ थी. एंड क्या कमाल का साथ रहता है इन द मॉर्निंग्स, दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द वर्ल्ड न्यूज दैट यू प्रॉबेबली मिस्ड आउट ऑन लिसनिंग इन द मॉर्निंग और फाइंडिंग आउट इन द मॉर्निंग और रीडिंग अप इन द मॉर्निंग. आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाता है हमारे मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो विथ शबनम जी के साथ. एंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM. इट इज एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स यू to that desiness in us. So let's get into the music that I want to play for all of you right now, ladies and gentlemen. July 20.

टीएफ आज मंडे है, घड़ी में बजे हमारे बजने वाले हैं 10:09, July 28th. इट इज द 201st डे ऑफ द ईयर एंड फॉल्स इन द 30th वीक ऑफ दिस ईयर, यानी कि कुल मिला के 164 डेज रिमेनिंग ऑफ 2026.

लिसन यू ऑल नीड टू बी अवेयर कि आज दोपहर से हीट एडवाइजरी शुरू हो रही है एंड इट विल रन अंटिल 8 PM. दैट्स द वेदर अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू वुड डेफिनेटली मस्ट बी अवेयर ऑफ. बिगिनिंग द हॉटेस्ट वीक सो फार दिस समर, इट इज गोइंग टू बी प्रिटी हॉट. हीट इंडाइसेस हमारे पता है 105 बोल रही थी. लुक एट मी, सीरियसली इंग्लिश का असर ऐसा हुआ है कि हम मतलब एक शब्द को भी स्प्लिट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में. बट येस, कमिंग बैक टू द हॉट टॉपिक एंड इट इज द हीट इंडाइसेस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. 105 to 110 एंड एट सम प्लेसेस इट कैन गो अप टू 115. दैट इज द हीट इंडाइसेस यू नो इन एक्शन दिस वीक फॉर ऑल ऑफ अस. दिस हॉट एंड ड्राई पैटर्न विल लास्ट ऑल वीक फॉर ऑल ऑफ अस. हाउएवर देयर मे बी सम maybe just a little bit of possibility of tropical moisture coming out of for us and it will be later this week. And if that happens, hamare temperatures thode se kam hone ke chances hain towards the weekend. And a few degrees lower means a lot when we are playing with triple digits, right? To aaj ka high hamara 101 ke aas paas hoga kyunki hot aur humid conditions ye jo prevail karne wale pure hafte. इससे हमारे जो हीट इंडेक्सेस है ना, इट कैन सोर अप टू 115. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर. सो नाउ दैट इज कवर्ड. लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन फनिशर रेडियो 104.9 FM.

0: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
2: आई हैव बीन रिसर्चिंग रिटायरमेंट प्लानिंग
3: ओह रियली वेयर
2: गूगल यूट्यूब अ गाय ऑन टिकटॉक
3: और यू कुड जस्ट टॉक टू वेल टैक्टिक
2: व्हाट्स द डिफरेंस
3: दे क्रिएट अ रियल रिटायरमेंट स्ट्रेटजी नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स बट अ प्लान फॉर व्हेन योर इनकम स्टॉप्स
4: वेल्थ टैक्टिक बिकॉज रिटायरमेंट नीड्स अ स्ट्रेटजी नॉट अ सर्च बार फॉर फ्री कंसल्टेशन Call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
5: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
8: उमर ख्वाजा
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com
10: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
11: Tracks that put you on the right track.
12: Right track goes straight to Furniture Radio 104.9 FM. तो जी हाँ आप सभी को मैं warm welcome करना चाहती हूँ. If you're tuning in just now, starting with Monday, that amazing weekend that we had with FIFA finals and the bronze finals. Of course, we'll talk all about that in the FIFA Fever segment. And this is the last segment of FIFA that we are going to have between 12 to 12:30. बहुत अजीब सा लग रहा है थोड़ा दुख सा लग रहा है कि एक ना जैसे एक फेस्टिवल की तरह चल रहा था इतने सारे दिनों से मोर देन अ मंथ्स टाइम दैट इट वाज ऑन जून 11 से शुरू हुआ था एंड फाइनली जुलाई 19 को कल ख़त्म हुआ एंड हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन वील टॉक ऑल अबाउट दैट एंड मच मोर थोड़ी देर में हमारे साथ ड्रीम होम मॉर्गेज से मिस्टर हुसैन पंजवानी इज गोइंग टू जॉइन अस ऑन एयर एंड गिव अस सम टिप्स एंड एडवाइस ये घर से रिलेटेड जो खरीदने का और ये जो लोन एंड मॉर्गेज का ये जो होता है ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है उस कंफ्यूजन को ही थोड़ा सा आपके लिए आसान करते हैं ऑन एयर और बाकी की आप उनके साथ जानकारी ले सकते हैं यू नो यू कैन रीच dreamhomemortgage.com टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम इन अ लिटिल बिट मच मोर देन दिस दैट वी आर गोइंग टू कवर कीप लिसनिंग टू फर्निचर रेडियो 104.9 FM

You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. आवाज में ऐसी शिद्दत हो और ये आवाज हो और ये हुनर हो तो एक और गाना तो भाई बनता ही है. विशाल मिश्रा, ladies and gentlemen.

This is the segment which is called This Day in Cinema History. और इसीलिए ये गाना प्ले हुआ आप लोगों के लिए जो आज ही के दिन रिलीज हुआ था. फिल्म का नाम पार्टनर इन द ईयर 2007. डेविड धवन की फिल्म थी. सलमान खान, गोविंदा, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, दीज वर द स्टार्स इन दिस फिल्म. सुपर हिट रही ये फिल्म. लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के पहले काफ़ी कुछ हंगामा रहा और वो हंगामा ये था कि ये फिल्म जो है हॉलीवुड फिल्म विल स्मिथ की जो फिल्म थी ना हिच जो 2005 में आई थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी और सोनी पिक्चर्स ने इस फिल्म के जो राइट्स लेकर रखे थे. तो जब डेविड धवन ने बनाना शुरू किया उन्होंने सीधे ये कुछ $30 million का एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट उनके लिए उनके ऊपर एक्चुअली लगा दिया था. बाद में ये इश्यू सेटल हुआ और सोनी ने इस फिल्म के एक्सक्लूसिव ग्लोबल सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्वायर किए एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द मूवी पार्टनर. और पार्टनर जो है सुपर हिट रहा. ये तो बता दिया हमने पार्टनर के बारे में जो 2007 में रिलीज हुई थी. लेट्स टेक यू सम 11 इयर्स अहेड फ्रॉम दैट टाइम 2018 पे आए क्योंकि 2018 को एक हिट फिल्म इफ नॉट सुपर हिट लेकिन जिस फिल्म से इंस्पायर होके ये फिल्म बनी थी हिंदी फिल्म वो मराठी फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी. ब्लॉकबस्टर फॉर श्योर एंड नागराज मंजुले वाज एट द हेल्म ऑफ इट एंड इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रिकॉर्ड इट्स म्यूजिकल स्कोर एट द प्रेस्टीजियस सोनी सिम्फनी स्टूडियो इन LA फीचरिंग ओवर 60 म्यूजिशियंस. म्यूजिक था अजय अतुल का और वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था. एंड दिस फिल्म डेफिनेटली महाराष्ट्र का यानी कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिट उस टाइम का रहा होगा. एंड दैट्स सैराट विच केम इन 2016. तो तब शशांक खैतान ने इसी का हिंदी जो बनाया विथ ईशान खट्टर और फर्स्ट टाइम आई स्क्रीन पर जानवी कपूर. एंड दिस वॉज अ वेरी एंटिसिपेटेड फिल्म कंसिडरिंग कि इसकी इसका जो मराठी वर्जन था जो कि ओरिजिनल वर्जन था वो बहुत बड़ी हिट हुई थी. तो उस कंपैरिजन में बिल्कुल भी ज़्यादा आप इसको वेटेज नहीं दे पाओगे एट द बॉक्स ऑफिस. बट नॉनदलेस ए गुड फिल्म एंड इट डिड एक्वायर द स्टेटस ऑफ बीइंग ए हिट एट द बॉक्स ऑफिस.

जैसी फिल्म्स जो आज के दिन रिलीज हुई हैं, वैसी कुछ फिल्म्स के हम गाने सुनवा रहे हैं आप लोगों को. अब ये जो अगली फिल्म है इसके बारे में जस्ट बात करने वाली हूँ कि गाना तो नहीं सुना सकती, बिकॉज दिस इज दिस हॉलीवुड फिल्म फ्रॉम 2012 जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी. एंड गेस व्हाट, द डायरेक्टर वॉज क्रिस्टोफर नोलन. एंड क्रिस्टोफर नोलन की ही जो फिल्म आई हुई है, इट इज द ओडिसी, विच रिलीज ओवर द वीकेंड. और इसके रिव्यूज इतने ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव हैं कि अब जाके देखना ही पड़ेगा. मैं सोच रही थी कि आराम से घर पे बैठ के देखूंगी, लेकिन नहीं, जब ऐसे ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिले ना किसी फिल्म के लिए, तो जाके थिएटर में देखने की बनती है. एंड देन ऑफ कोर्स यू नो ओडिसी इज ए काइंड ऑफ फिल्म जो कि थिएटर में ज़्यादा मज़ा आएगा, फॉर द सिनेमाटोग्राफी, फॉर द काइंड ऑफ ग्रैंडर दैट फिल्म दिस फिल्म ब्रिंग्स, राइट. तो द ओडिसी जो कि होमर की कहानी पर बेस्ड है, एंड इट इज क्रिस्टोफर नोलन हु हैज मेड इट इंटू दिस फीचर फिल्म, जिसमें मैट डेमन के साथ टॉम हॉलैंड एंड एन हाथवे, ये सारे जो हैं एक्टर्स, ये मेरे बड़े फेवरेट से एक्टर्स हैं, तो फिर तो बनती ही है देखने की. वैसे ये मैं आपको बताऊँ, जस्ट यू नो एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया हियर, देर इज़ एन ए आई मूवी विद द सेम नेम, द ओडिसी इज इन मेकिंग, जिसका टीजर पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से रिलीज किया गया था. एंड दिस इज गोइंग टू बी ए 135 मिनट मूवी, और ये फुल्ली एआई जनरेटेड अडैप्शन ऑफ होमर्स एपिक. कैन यू इमेजिन, मतलब ये परफेक्ट टाइम क्यों चुना गया है, इट्स नो ब्रेनर. इट इज़ गोइंग टू राइड ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ क्रिस्टोफर नोलन्स फिल्म, ऑफ कोर्स नो यू नो बिग ब्रेनर हियर. और ये जो है कुछ फाइव फिगर्स के बजट पे बना है, कुछ मिड फाइव फिगर्स के बजट पे बना है, और केवल एक ही बंदे ने बनाया है, क्योंकि दिस इज़ एन एआई फिल्म, ऑल एआई एक्टर्स एंड एवरीथिंग इज आर गोइंग टू परफॉर्म इन दैट वन. द बिग थिंग दैट इज मिसिंग इन द टीजर दैट पीपल हैव पॉइंटेड आउट इज द इमोशन, लेडीज एंड जेंटलमैन. इमोशन ही नहीं लग रहा है, कैरेक्टर्स बड़े मतलब बिल्कुल परफेक्ट से वो सारा कुछ है, लेकिन इमोशन नहीं है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में आपको भर भर के मिलेगा. जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थॉट आई bring this to the forefront as well. And actually pata hai, main ek Cinemark and IMAX ka ek insta handle dekh rahi thi, jahan pe ye jo IMAX ke liye ye jo film banaya gaya hai na, ye jo premium large format jise kaha jata hai, us pe jo banaya gaya hai, wo kaise process hota hai, it's amazing to see actually. Zarur dekhega. Dekhi, main itne baaton mein ulaj jati hu ki wo asal mudda to reh gaya ki ji haan, ek aur film jo aaj ke din release hui thi, let's talk about that. And it is Deewana Mujhsa Nahin, jo 1990 mein Aamir Khan aur Madhuri Dixit ke saath banayi gayi thi, jo flop thi at the box office. Just FYI, hame to bhai Aamir Khan, Madhuri Dixit aise pasand hai ki flop ho ya hit ho, hum to phir bhi dekhenge.

0: कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो H1B F1L1। अगर आप हैं या नॉन इमिग्रेंट किसी भी किस्म के वीजा पर हैं और अगर आप US परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं तो मेक श्योर यू गेट इन टच विद सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज। यू कैन राइट टू info@seema-mehta-law-firm फॉर एनी काइंड ऑफ वीजा दैट यू हैव एंड मच मोर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन,
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख।
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
7: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag aur upar se stress.
10: Arre relax, you need a cool therapy.
9: Therapy? Wo to bahut mehengi hai.
10: Nahi, cool matlab cool cha therapy.
9: Ye kya hota?
10: Simple, Chandigarh Bites Express in Allen.
11: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites. Straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
12: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
13: Kya aapko business khareedne ke liye loan chahiye?
14: Call the SBA Loan Experts.
13: Kya aap franchise shuru karna chahte hain?
14: Call the SBA Loan Experts.
13: Kya aapko apne business ke liye working capital ki zarurat hai?
14: Call the SBA Loan Experts.
13: Construction ho ya renovation, business khareedna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me. It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
15: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
19: मेरा?
15: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
19: वो
20: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय

0: बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

जो अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं, अगर उनको लगा हो कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी यार। हमारे पड़ोस का जो स्टूडियो है ना, यानी कि रेडियो संगम पे मधुर रीमा जो मॉर्निंग शो करती हैं, उनका आज बर्थडे था, तो वी हैड टू कट केक एंड सेलिब्रेट, राइट। वहीं से आ रहे हैं हम, और ये ना फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन डोंट यू थिंक ऐसा ही होता है कि द डे आप बिल्कुल तैयार नहीं होते, उस दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि फोटोग्राफ्स भी ज़्यादा खींचे जा रहे हैं ग्रुप्स के साथ, और उसी दिन लोगों से भी मिलना होता है, यू हैव स्टेप्ड आउट एंड यू आर नॉट रेस्ट वेल एट ऑल, और उसी दिन सबसे आपकी मुलाकात होगी। वैसे कोई नहीं दिखता आपको, लेकिन उसी दिन आप दुकान गए और हजार लोग आपके पहचान के आपको वहां पे मिल गए। क्या है ना, मतलब सीरियसली। बट यस, टू मधुर रीमा ए वेरी हैप्पी बर्थडे लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर बिग फैंस ऑफ हर। आई एम श्योर यू एंजॉय द तेलुगु शो दैट शी ब्रिंग्स फॉर यू एवरी डे, एवरी वीक डे इन द मॉर्निंग्स। सो येस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस टू हर फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फन एशिया नेटवर्क।

आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप H1B, F1, L1 या किसी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, तो आपके लिए सीधा रास्ता जाना चाहिए द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता को. एंड अटर्नी सीमा मेहता जो है, इनकी पूरी टीम बड़ी एक्सपीरियंस्ड है. दे स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इसीलिए आपको जो एक्सक्लूसिव हेल्प मिलेगा वो आपका रास्ता जो है वंस अगेन गोज टू द लॉ ऑफिस of Seema Mehta, including services of EB-5 investor visas that you can get at theirs, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship as well. और अगर आपको EB-5 investor visa program के लिए, let's say, आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको email करना है, as simple as that, info@seemamehtalawfirm.com is the email address for all of you. अच्छा, कितने लोग हैं जो आज तक हमें सुनते आए हैं लेकिन कभी कॉल जिन्होंने नहीं किया, तो मैं थोड़ी सी आपकी ना बुराई करने वाली हूँ. यस, क्रिटिसाइज करने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि दैट इज़ द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. क्योंकि 11 से 12 के बीच में समथिंग दैट रिलेट्स टू यू, रिलेट्स टू मी, वी टॉक अबाउट दैट, राइट? तो आज का टॉपिक है क्रिटिसिज्म. कैसे लेते हैं आप क्रिटिसिज्म? थोड़ा पता करते हैं कि हर जेनरेशन का अपना एक तरीका था टू यू नो फेस क्रिटिसिज्म और रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म, लेट्स से. और क्रिटिसिज्म कब अच्छा है और कब बुरा नहीं है, ये सारी बातें हम करेंगे. इसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आपको पता है कि लाइंस हमेशा आप लोगों के लिए खुली रहती हैं. 9722355555 ज़रूर कॉल कीजिएगा. बिंदु ने कॉल किया कि ये गाना सुनना है उनको, तो ये स्पेशली गोइंग आउट टू बिंदु. ये है गपशप गली विथ मी टू.

Sonam Kapoor and Imran Khan in this one. I hate love stories ka gana, and nobody hates them, but often people have criticized their skills, right? Acting skills se zyada unki Sonam Kapoor ke liye to particularly behind the camera, yani ki, you know, beyond the camera, I should say, actually, कि उनके interviews वगैरह में कभी कभी काफ़ी snobs सी लगी हैं. उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत criticize हुआ है. सोनम कपूर को काफ़ी criticize किया गया. तो talking about criticism, ladies and gentlemen, आज हम एक ये शब्द है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं जो बड़ा भारी भरकम है. Criticism, a very difficult thing to take, right? Keeping aside the random trolling, okay? Let's consider the criticism coming from a genuine person for a genuine reason. किसी ज्ञानी व्यक्ति ने ये कहा है, और यहाँ पे मैं ये quote करना चाहूँगी कि criticism may not be agreeable, but it is necessary because it fulfills the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things. बिल्कुल 100% सही ये जो स्टेटमेंट है, इससे मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ. पर जब मिलती है तो यार बड़ी मिर्ची लगती है, मानते हैं कि नहीं. बस इसी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट. तो चलें कंगना रनावत पे, जिनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है. क्रिटिसिज्म फॉर हर हाईली आउटस्पोकन व्यूज ऑन सोशल मीडिया, पोलिटिकल पोलराइज व्यूज जो उनके कई बार होते हैं, पब्लिक व्यूज में जो वो पढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कंगना रनावत को पसंद भी किया जाता है और ना पसंद भी किया जाता है.

0: देखने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772, that's 972-863-7772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: Now, sir, or price?
1: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: Main heroine hoon.
9: Aaja meri gaadi mein baith ja.
10: Baith jaao? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
11: Wo thoda overheating tha.
10: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो,
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि क्रिटिसाइज करना ना लाइफ में बहुत आसान होता है, नुक्स निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप रियली केयर करते हो ना तो उन जो भी चीज़ों पर आपको कुछ आपत्ति है या आपको सही नहीं लगता है, आप जाके फीडबैक देते हो. तो दैट इज़ अ फीडबैक वी ऑल्सो नीड. विदाउट एनी क्रिटिसिज्म लेट्स गेट दिस गोइंग, क्योंकि भाई ये है कि फीडबैक मैं भी दूंगी एट दी एंड ऑफ दिस सेगमेंट. मैं भी कुछ फीडबैक देना चाहूँगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जो मैं चाहती हूँ कि अगर आप तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जाते हैं और अगर आपको कोई डिश पसंद आता है तो उनको भी बताइए, भाई हमें भी बताइए कि व्हाट यू लाइक एंड मे बी व्हाट यू डिडंट लाइक. जो डिडंट लाइक वाला पार्ट है, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप उनको बताओ, बिकॉज दे want to make their customers happy, right? हर जो service provider है वो यही चाहते हैं कि उनके जब customer निकले तो उनकी वाहवाही करें, right? जहाँ भी जाएं उनके बारे में अच्छा बोले. तो अगर ये अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं तो हम भी ब्लेम करने के लायक हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि एक ऑनेस्ट फीडबैक टाइम टू टाइम ज़रूरी होती है, इफ़ इट कम्स फ्रॉम एन ऑनेस्ट प्लेस, करेक्ट. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि वो जो बिल्कुल वो तंदूरी कबाब, मुंह में पानी आ रहा है इसीलिए इतनी शिद्दत के साथ बात करती हूँ एवरी टाइम आई टॉक अबाउट कबाब, स्मोकी तंदूरी कबाब हो या वो जो बढ़िया से बिल्कुल ऐसे ना मखमली करीज जो उनके पास है ना, या फिर वो गर्मा गर्म नान. बंदा समझ ही सकता है कि जब पेट में चूहे हाथी सब दौड़ रहे हो ना तो ये और एक इनमें ना फीलिंग आ जाती है इन सब बातों में. तो जी हाँ, ज़रूर जाएं यार तंदूरी फ्लेम. इफ़ यू आर फीलिंग द हंगर दैट आई एम फीलिंग फॉर सच थिंग्स तो फिर आप ज़रूर जाएं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. इट इज़ इन गालिंड एंड आई अश्योर यू देर आर मेनी मेनी डिशेज दैट यू विल एब्सोल्यूटली फॉल इन लव विथ. वंस अगैन, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट फॉर ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स with that home-style punch that you are seeking. Once again, this is Gapshap Gali with me too. और हमारी criticism पे बात चल रही है क्योंकि ये बड़े मुफ्त में मिल जाता है और social media के जरिए कुछ ज़्यादा ही मुफ्त में मिल जाता है, and इसीलिए वो trolling वगैरह मैं नहीं बात कर रही हूँ, वो मुझे लगता है totally unnecessary है. लेकिन उसके beyond अगर हम अपने लोगों की बात करें जो हमें पसंद करते हैं, who people who care about us, वो कभी कभी ऐसे हमारी नुक्स निकाल देते हैं यार, बता देते हैं कि यार you know what, this is not right in you, you know what, तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, या let's say कि जो तुम पहने हुए वो सही नहीं लग रहा है, as simple as that, you know. तो ये जो होता है ना, यही बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि criticism, सच बताइए जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो कहीं तो जाके बात चुपती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नॉट फील बैड, राइट. हम में से कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने बारे में कुछ बुरा सुनकर ना मतलब ऐसे सल्क करने लगते हैं कि यार कि पता नहीं क्या ही हो गया. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोटल इग्नोर मारते हैं यार कि मतलब बको जो बकना है, हमें तो कुछ करना नहीं है इसके बारे में. कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब सुनते हैं, जैसे मैं अपने लिए अगर कहूँ कि अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करे तो मैं सुन लूँगी, डिफेंसिव भी होंगी उस टाइम पे, और उसके बारे में फिर ना थोड़ा बहुत एनालाइज करने की कोशिश करूँगी या शायद अपने आप को कहीं सही भी दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसके बारे में सोचती रहूँगी थोड़ा सा. हाँ, मैं मतलब उस ब्रीड को बिलोंग करती हूँ. एंड देर आर पीपल जो कि सच्ची में जब अपनी क्रिटिसिज्म सुनते हैं ना तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू वर्क ऑन इट जो कि उन्हें सही नहीं लगता. हम में से होपफुली ये सारे लोग कर पाते हों कि अपने लोगों से जब जेन्युइन क्रिटिसिज्म मिलता है तो हम थोड़ा सा परखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. एंड ऑल दैट कैन ओनली हैपन अगर आप पेशेंस रखते हो, उस टाइम पे नहीं सोच के बाद में ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि इफ देर इज दैट चेंज दैट यू थिंक वुड वर्क फॉर यू.

कुछ ना क्रिटिसिज्म पे बात चल रही है. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और ये बचपन में एक सुना था मैंने संत कबीर का एक दोहा, जो कि मैं यहाँ पे ना रिपीट करना चाहूंगी. सबसे बड़ा लाइफ हैक शायद यही है, यू नो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए. ये कहना आसान है, शायद करना मुश्किल है. लेकिन निंदक जो है ना, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आसपास ही रखिए, क्योंकि ये पानी और साबुन के बिना ही आपका माइंड साफ कर देते हैं, आपका दिमाग साफ कर देते हैं. यू नो, ये बात कहना आसान है, लेकिन जो हमेशा ही निंदा करते रहे उसके अगर उसको पास रखो ना, तो यार मेरे ख्याल से या तो आप ही नेगेटिव हो जाओगे, या तो फिर मतलब कहीं आप दूर भागने की कोशिश करोगे. सो ऑल दैट इज देयर, यू नो, क्रिटिसिज्म के बारे में हम जितनी भी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन क्रिटिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट, एंड लेट्स पुट इट लाइक अ फीडबैक. यू नो, जब हमारे जेन्युइन लोगों से हमें मिलती है, वो चीज़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी पता है मरियम का कॉल आया था, उन्होंने कहा जब कोई मुझे कोई क्रिटिसाइज करे तो आई थिंक कि मैं फेमस हो गई हूँ. मेरे ख्याल से आपके और करण जौहर के विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि करण जौहर भी यही कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी कितनी भी क्रिटिसिज्म करे, क्योंकि मुझे उससे बस यही लगता है कि मैं चर्चे में हूँ, मेरे बारे में लोग बात करें तो मैं कितना इंपॉर्टेंट होगा कि वो मेरे बारे में बात करें. द डे दे स्टॉप डूइंग इट आई विल बी वरीड. I think that's a good perspective to see the things in this light, you know, criticism के बारे में. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी इस criticism के लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम बहुत कुछ और उल्टा करते हैं अपने लिए. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली दैट अनहेल्दी सिर्फ क्रिटिसिज्म को दिल पे लेना नहीं कहते हैं. अनहेल्दी वो भी होता है जब क्रिटिसिज्म के डर से हम कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ ट्राई नहीं करते हैं. यू नो, लोग क्या कहेंगे इज़ द बिगेस्ट ड्रीम किलर. फुटबॉल मैचेस का एग्जांपल ले लीजिए, अगर ये जो टूर्नामेंट में सारे जो ये प्लेयर्स खेलने आए थे ना, अगर ये सोच के अगर वो बैठ जाए ना कि यार मैंने ये शॉट खराब लगा दिया, या गोल मिस हो गया, या इस तरह की कुछ चीज़ हो गई, और ये पूरी जनता दे आर गोइंग टू बू मी, एंड ट्रस्ट मी पीपल डू दैट. स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली ये होता है कि अगर जीते तो सिर पर चढ़ाते हैं, अगर नहीं जीते तो बिल्कुल पैरों के नीचे धूल बना देते हैं कई बार, अगर कंट्री हार जाती है तो. यू नो, दैट इज़ द थिंग कि अगर आपने इन चीज़ों को अगर दिल पे ले लिया तो फंक्शन करना ही मुश्किल हो जाएगा. तो यस, वो क्या गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना. आप मुझे ये कहें कि ये गाना किसने कॉम्पोज किया है. इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग विच इज़ रीमेड फॉर इश्क विश्क रीबाउंड.

0: आज के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में यही कहना चाहती हूँ. द टेक अवे प्रॉबेबली इज कि क्रिटिसिज्म या क्रिटिक सही हो या गलत, ठीक लगे या बुरा, मेक श्योर कि आप उस पर सोचें ज़रूर, और वो भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से, यू नो, सो दैट यू हैव दैट रैशनैलिटी टू ईदर डिस्कार्ड द क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली और डिग डीप इन टू द रीज़न फॉर इट एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस. थोड़ा मुश्किल है ईगो को साइड रख के, यू नो, इस ये सारी चीज़ें करना और ऑफेंड ना होना, बट लेट्स ट्राई, यू नो, कि हम ऐसा कर पाएं. इसी चिल और पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपके साथ एक और पॉजिटिव बात शेयर करना चाहती हूँ, एंड इट इज़ टू डू विथ योर हेल्थ. टेक्सस प्राइमरी केयर, जो कि 13 साल से हमारी कम्युनिटी को सर्व करते आए हैं, नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड सेकेंड लोकेशन विच इज़ इन फ्रिस्को. इनका नाम है ल्यूनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ल्यूनॉक्सी मेडिकल जो है एक प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ये सारी एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी. तो है ना ये कमाल की बात. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. and you can walk in anytime. No appointment needed. And this is ल्यूनॉक्सी Medical in Frisco, their second location. Do remember that and remember to come back. This is Gupshup Gali.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahu.
9: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: It's true. Hum apne sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
15: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
14: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
15: वेट, व्हाट?
16: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
16: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
18: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
19: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
20: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit OshoUniversal.com.

0: All right, with all that energy going on, let's bring that energy one more day. And as the hangover continues from the weekend, let's talk about FIFA bronze finals and, of course, the trophy day that was just yesterday, ladies and gentlemen. Jiska hangover zabardast chal raha hai kyunki watch party mere hi ghar pe tha, to tufaan mere hi ghar pe macha tha, and maza aa gaya, ladies and gentlemen. Honestly, and let's talk about the Saturday game first, and then we will go to that. सैटरडे गेम के लिए आपके पास एक गिव अवे है मेरी तरफ से और फूडिस्तान गिव अवे की तरफ से आपके लिए, जो ये फूडिस्तान के अंदर जो डी वाइब रेस्टोरेंट है ना, उनकी तरफ से एक गिव अवे है. सो आई विल टेल यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर राइट अवे टू विन a dish from D-Vibe restaurant, the upscale Indian restaurant located inside Foodistan, jo ki hai Aubrey mein. Aapke liye wahan pe groceries bhi hain, fresh produce hai, bakery items hai, live pani puri station hai, aapke liye ganne ke juice ka station hai, plus D-Vibe, this upscale dining experience that you can get inside Foodistan. Aur saath hi saath ye yaad rakhega ki Foodistan aapke liye desi convenience hai, ki agar aap 5 mile ke radius mein rehte hai na, तो एनीथिंग दैट यू हैव ऑर्डर $30 के ऊपर, तो आपके लिए फ्री डिलीवरी है यार फूडिस्तान से. आई सो विश कि मैं वहाँ पे आसपास रह रही होती. बट येस, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर रियली विद इन दैट 5 miles रेडियस, दैट फ्री डिलीवरी फॉर यू फॉर ऑर्डर्स ओवर $30. और फिलहाल एक फ्री आप लोगों के लिए आइटम, एक डिश फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट, इफ यू गिव मी द आंसर टू व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क इन अबाउट ए मिनट्स टाइम हियर. क्या है ना कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप थर्ड प्लेस प्ले ऑफ जो हुआ सैटरडे को हुआ, एंड इट वॉज नो ऑर्डिनरी गेम, एन एब्सोल्यूट 10 गोल थ्रिलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अनहर्ड ऑफ. सीरियसली, मायामी में खेला गया ये हाई स्टेक मैच बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस, और इन दोनों की एनर्जी काफी फिजल्ड लग रही थी बिफोर द मैच, बट द मैच स्टार्टेड एंड दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे वर बैक इन एक्शन. 6-4 जो इंग्लैंड ने हराया फ्रांस को और ब्रॉन्ज मेडल ले गए, थर्ड प्लेस ले गए. द फर्स्ट हाफ वॉज कंप्लीटली वन साइडेड, जहां पे हमने देखा कि इंग्लैंड ने एक मैसिव 4-0 का लीड लेकर रखा था, एंड देन सेकेंड हाफ हैपेंड एंड थिंग्स स्टार्टेड शिफ्टिंग, और फ्रांस ने जबरदस्त कमबैक दिखाया, और उनके जो स्टार प्लेयर है, उन्होंने जो गोल्स का जो सिलसिला ऐसा क्रिएट किया, उनका नाम बताना है, 22 गोल्स दैट ही मेड इन दिस वन वर्ल्ड कप, एंड ही डेफिनेटली इज ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर, जिनको गोल्डन बूट भी मिला इस वर्ल्ड कप का, उनका नाम बताना है. अगर आप बताते हैं तो आपके लिए फ्री आइटम फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. यस, द वन दैट इज दैट अपस्केल इंडियन रेस्टोरेंट इनसाइड फूडिस्तान. तो जी हाँ, ये है हमारे मैच के बारे में. और ऑलराइट, यू आर डेफिनेटली लाइव ऑन एयर, एंड आई थिंक यू विल गेट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. टेल मी, यू नो द नेम.
1: इज इट किलियन एम्बापे?
0: इट इज. एंड हु इज दिस?
1: माय नेम इज विवान.
0: And you have just won for yourself from D Vibe Restaurant. And may I ask you how old you are?
1: I am 15.
0: I thought so. And what a match that was. Did you watch it entirely?
1: Yes.
0: Are you an Mbappe fan?
1: Yes.
0: Who were you rooting for? Last question for sure. Who were you rooting for?
1: Portugal, but they lost.
0: They were out. But then who for the bronze medal and the finals, of course? Who were you rooting? Which two teams?
1: I was rooting for France and then Argentina.
0: I am so sorry to hear that, but I can tell you, if I can, rub it on your face, I was rooting for the other two teams. Yay! All right, thank you so much, my dear. I'm going to put you on hold, and definitely that D-Vibe thing is coming to you. I'll take all your details in a minute here. And what a match that was, ladies and gentlemen. And ye jo ek spectacular finish hua is match ka, it scored, the score, final score was 6-4. Can you imagine kya tha? And is match ko 1982 ke baad se World Cup ka highest score game bataya ja raha hai. Yes, let me give that giveaway to that young gentleman there, and I'll come back and play some more music and talk more FIFA right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: All right, ladies and gentlemen, Prabhu Deva in the town very, very soon. And इसीलिए तो प्रभु देवा का गाना लगाया यार. क्या एनर्जी होती है उनके गानों में, और यही एनर्जी आप फील करने वाले हैं इन द स्टेडियम देयर, आई मीन द थिएटर, टेक्सास ट्रस्ट सीयू थिएटर, क्रेडिट यूनियन थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी. दैट्स वेयर ऑल द हंगामा इज गोइंग टू बी. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे इंडिया के माइकल जैक्सन, प्रभु देवा, लाइव इन डालस. लेडीज एंड जेंटलमैन, तारीख क्या है? तारीख मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर, तारीख ही नहीं बताई गई है यार, आप ही मुझे बता दो तारीख क्या है. और उनके साथ जो हैं वो हैं लॉरेन गॉटली एंड सोनल भदुरिया, एलेक्जेंडर नोएल, हरिनी एंड नताशा एंड सानवी मेघना फॉर दैट अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट दैट यू आर गोइंग टू सी. ओके, आई हैव द डेट, इट वॉज राइट हियर, मेरे ही मिस हो जा रहा था. सैटरडे August 1 को है यार. इट्स इट्स इंचिंग टूवर्ड्स अस एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू रियली यू नो गो टू फाइनेंशियल नेटवर्क सोशल मीडिया पेजेस टू बुक टिकट्स ईजिली. हमारा एक पिंड पोस्ट है जिसपे आप बुक कर सकते हो टिकट्स, नहीं तो आप चाहे तो कॉल करके भी बुक कर सकते हो 2482333828 मीडिया पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. ये धमाल हम कंटिन्यूड रखेंगे प्रभु देवा का एक और गाना जो आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि यार वही धमाल तो कल हुआ, राइट? द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ब्रॉन्ज मेडल फाइनल दैट देयर वॉज ऑन सैटरडे, संडे को यानी कि कल, द हाईली एंटिसिपेटेड ग्रैंड फाइनल दैट हैपेंड एंड फोल्डेड एट मिडलाइफ स्टेडियम इन न्यू जर्सी. और इस ग्रूलिंग शोडाउन में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से जो हराया है बॉस, वो जो मैच था ना, स्पेन कंप्लीटली डिक्टेटेड द टेम्पो ऑफ द मैच फॉर श्योर, डोमिनेटिंग पोजेशन एंड आउटशूटिंग द अर्जेंटाइन साइड 20-3 इन रेगुलेशन टाइम, विच बेसिकली मींस कि स्पेन ने 20 बार स्टैंडर्ड टाइम के अंदर गोल करने की कोशिश की है, वाइल अर्जेंटीना मैनेज्ड ओनली 3. पर गोलकीपर जो थे वो कौन थे अगर आप मुझे बता दो, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो द स्टार, द गोल कीपर हु सेव 12 ऑफ यू नो द गोल्स, द गोल अटेम्प्ट बाय स्पेन, एंड दैट इज द नेम आई एम सीकिंग. अगर आप मुझे बताते हैं वो वेरी वेरी वेरी वेल प्लेड गोल कीपर, क्या बोलना चाहिए, वो हॉट आप जो जो हीट वो लेकर आए थे, बस उसी के कारण रेड हॉट चिली पेपर का जो मैं ये ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कौन आप में से किसी को दूंगी अगर मुझे आपने उन गोलकीपर का नाम बताया, द गोलकीपर जिन्होंने 12 सेव्स के साथ एक नया फाइनल रिकॉर्ड बनाकर उन्हें लगातार रोका, स्पेन को लगातार रोका. यू हैव टू टेल मी द नेम. ऑल राइट, 9722355555 रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से आपके लिए गिव अवे है. इन द मीन टाइम लेट मी क्विकली टेल यू द इंटेंस डेडलॉक वॉज फाइनली ब्रोकन इन द 106 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम एज वी ऑल नो व्हेन सब्स्टिट्यूट टोरेस फायर्ड ए पावरफुल क्लोज रेंज विनर. और फिर हुआ कमाल, और वो जो हुआ तो वो क्या ही हुआ कि बस उसके बाद इट वॉज अ फेरी टेल एंडिंग टू द स्पेन साइड ऑफ कोर्स. एंड मेसी का चेहरा बहुत खराब लग रहा था बाद में देखने में, बट आई टेल यू समथिंग एल्स, अगर अर्जेंटीना जीत जाती ना तो उनको जीतने की खुशी नहीं मिलती, क्योंकि इतनी सारी उनके अगेंस्ट यू नो एक पिटिशन चल रहा था एंड ऑल ऑफ दैट वॉज हैपनिंग. आई थिंक अगर जीत जाते तो वो पूरी तरह से खुशी नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि मैनी वर टॉकिंग अबाउट द फेवरेटिज्म दैट मेसी एंड हिज टीम हैड गॉटन इन दिस टूर्नामेंट, तो वो एक प्योर अनएडल्ट्रेटेड खुशी नहीं होती उन्हें जीत की. तो मेरे ख्याल से इट हैपन्ड सो दैट यू नो डेस्टिनी मेड इट हैपन सो दैट यू नो सब खुश रहें. You know, if that makes sense at all. All right, ladies and gentlemen, I'm looking for the name of the goalkeeper. Please mujhe bataye aur red hot chili pepper ka giveaway leke jaye. Aap live on air ho?
1: Haan, mera naam Sayyad hai.
0: Haan ji.
1: Aur Martinez, jo ki Argentina ke goalkeeper hai.
0: Absolutely correct, and I'm going to put you on hold क्योंकि आपने शत प्रतिशत सही जवाब दिया. Martinez was on fire yesterday. क्या saves थे उनके, but then Spain ultimately won the tournament.

0: अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, डू यू नो कि स्पेन का जो यू नो 300% ओवरनाइट सर्च हुआ है इन फ्लाइट सर्चेस टू मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ये कमाल की बात है. एंड दैट इज द मैट्रिक ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, कि टूरिज्म पर भी इसका बहुत तगड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग स्पेन जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है फॉर दिस टूर्नामेंट, उनके लिए तो हुआ ही है. पर US द प्राइम होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, हमारे लिए भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है. विद सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट US नाउ एंड द हॉस्पिटैलिटी एंड द स्टेडियम्स एंड एवरीथिंग, जो यहाँ पे आए हैं वो एक्सटेंडेड एक्चुअली समर वेकेशन पे रुक गए हैं अपेरेंटली. सो ऑल द होस्ट कंट्रीज एंड द होस्ट कंट्रीज टू बी 2013 के जो होस्ट कंट्रीज हैं, मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन, ये सारे भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर्ज इन tourism. Iske alawa, the one thing that I want to talk about is the win, what they won, the winning team, of course, 2026 FIFA World Cup ke jo teen teams ne, unhone ek saath $112 million ka massive prize money hasil kiya hai, jinme se champion jo hai, Spain jo hai, they have gotten $50 million, and runners-up Argentina ko mila hai $33 million, along with third place England jinko mile hai $29 million. लेकिन इस मैसिव कैश पे आउट और ऑफिशियल वर्ल्ड कप ट्रॉफी के अलावा, इस साल एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव भी शुरू हुआ है इस टूर्नामेंट जो इसकी हिस्ट्री में हमेशा के लिए चला जाएगा. फीफा ने होस्ट नेशंस US, कनाडा एंड मेक्सिको की स्पोर्टिंग हेरिटेज को एम्ब्रेस करते हुए सुपर बोल स्टाइल चैंपियनशिप रिंग्स इंट्रोड्यूस किए हैं. सो विनिंग स्क्वाड के 30 मेंबर्स को गोल्ड मेडल्स के साथ ये कस्टम मेड रिंग्स दिए जाएंगे, जिनके एक साइड पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी और दूसरी साइड विनिंग नेशन की आइडेंटिटी को ऑनर करेंगे. और पोस्ट मैच सेलिब्रेशंस में कैप्टन और कोच को टेम्पररी रिंग्स दिए गए, जबकि परमानेंट कस्टम फिटेड रिंग्स विल बी गिवन टू देम लेटर. ये एक्सक्लूसिव कलेक्टर्स पीस जो है लिमिटेड एडिशन होने वाला है, क्योंकि फीफा स्ट्रिक्टली यू नो प्रोड्यूस 2000.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
7: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
8: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
3: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
7: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
3: If you hold H1B, F1, L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी।
2: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
11: Hi, this is Akshay Kumar, and you're listening to Funnacious Radio.

A very good afternoon to my desi people. आप सुन रहे हैं Funisher Radio 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी and you're all very welcome to my show Afternoon Adda. I'm really hoping कि आप सबका मंडे अच्छा जा रहा हो और आज का सवाल, आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा पर्सनल भी है. आप सबसे ज्यादा किस से डरते हो? किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को लिजर्ड से, किसी को हाइट से और किसी को अपने बॉस के कैन वी टॉक मैसेज से. कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता लाइफ में, लेकिन फिर अगर रात को कमरे में अचानक अंधेरा हो जाए तो उनकी तो वॉट लग जाती है. आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा डर, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर. मैं कॉल पे हूँ एट 972-235-5555.

आज है मंडे और मंडे को अक्सर लोगों को मंडे ब्लूज होते हैं, स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आपको अपने एवरीडे लाइफ के स्ट्रेस से आजादी चाहिए तो रूट आउट टू ओशो यूनिवर्सल, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक्स, म्यूजिक होगा, सेलिब्रेशन होगा, डीप साइलेंस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सब कुछ होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी प्रेम मात्रे। ये हो रहा है ऑन जुलाई 31st से लेके अगस्त 2nd तक एट ओशो कावल्य धाम इन डेनिसन। और अगर आप बिगनर हैं या फिर आप अगर एक्सपीरियंस मेडिटेटर हैं तो ये जो है सबके लिए है, एवरीवन इज वेलकम हियर। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको रजिस्टर करना है तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं बता देती हूँ, फटाफट लिख लीजिए। इट इज 2214395 6757। आई विल रिपीट इट फॉर यू, इट्स 2143956757। तो आपकी जो इनर पीस की जर्नी है वो यहाँ पे शुरू होगी। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट जो जो यहाँ पे जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। फिलहाल मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपका लाइफ में सबसे बड़ा डर क्या है, आपको मुझे कॉल करके बताना है एट 9722355555।

आज हम बात कर रहे हैं अपने अपने फियर्स के बारे में, और ये जो सारे फियर्स हैं वो ना दिखाई नहीं देते। कुछ डर ऐसा भी होता है, कभी होता है फेल होने का, कभी वो डर रिजेक्शन का, कभी जॉब लूज करने का, कभी पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का, अपने अपने फ्यूचर का, या कभी कभी अकेले रह जाने का, अपनी ड्रीम्स को अचीव ना कर पाने का भी डर काफी लोगों को होता है। और सबसे जो कॉमन फियर है वो ये है कि व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ। कभी कभी हम बाहर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सबके अपने अपने फियर्स होते हैं। समटाइम्स हम फेलियर से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि अगर हमने ट्राई किया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि लोग आजकल अपने अपने बारे में ही बात करेंगे। आज आपके बारे में बात कर रहे हैं या फिर कल किसी और के बारे में बात करेंगे, तो अपनी लाइफ उनके ओपिनियन के हिसाब से हम क्यों जिए। लेट्स प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स गाइस।

तो आज के टॉपिक से एक बात तो क्लियर है कि डर काफी लोगों को लगता है, किसी को कॉकरोच से, किसी को हाइट से, किसी को फ्लाइंग से और किसी को अपने फ्यूचर से। लेकिन लाइफ का एक सिंपल रूल है कि डर का होना प्रॉब्लम नहीं है, डर की वजह से अगर आप रुक जाते हो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो अभी आप भी अगर अभी भी लग रहा है कि यू नो डर हम नहीं बात कर सकते डर के बारे में, अपने फियर्स के बारे में, तो ऐसा ना करें, यू कैन यू नो प्राउडली टॉक अबाउट इट एंड देयर इज नो वरी एट ऑल। लेकिन उसकी वजह से रुके ना, ट्राई करते रहे, लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राइंग। और अभी अभी सफी का फोन आया था, उन्होंने हमें बताया कि उनको किसी चीज से डर नहीं लगता है, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये सफी के लिए।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Hey maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
0: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
9: तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: We are the sounds of the streets.

आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और अभी हम एक अमेजिंग सा गाना सुन रहे थे और आपको गाना सुनते ही वो सारे स्टेप्स तो याद आ रहे होंगे एकदम आपके माइंड में मुकाबला। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं फ्रॉम प्रभु देवा देन आपकी विश तो एकदम पूरी हो गई है, क्योंकि अगस्त 1 को प्रभु देवा विल बी लाइव अलॉन्ग विथ अदर किंग्स एंड क्वींस ऑफ डांस इंक्लूडिंग लॉरेन गॉटलिब, सोनल भौदेरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी, नताशा एंड सानवे मेघाना, ये सारे के सारे लोग जो हैं लाइव आने वाले हैं डैलस में आपके लिए। दिस विल बी एन अल्टीमेट डांस कॉन्सर्ट, तो आप सैटरडे ज़रूर जाएं अगस्त 1 को एट टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर एट ग्रैंड प्रेरी। और अगर आपको टिकट्स बुक करने हैं तो आप कॉल कर सकते हैं एट 248-233-3828 या फिर आप फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस पे जाइए और वहाँ पे पिंड पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने टिकट्स कर सकें।

वैसे अगर फन पिज्जा किचन है तो टेंशन क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है चीजी स्लाइसी पिज्जा अलोंग विथ देसी ट्विस्ट। और आपको मैं इसको एट अ स्पेशल ऑफर खाने का मौका दे रही हूँ, क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं अपने गिव अवे राउंड में। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है, और आप जीत सकते हैं $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। तो तैयार हो जाइए, बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन है। और लास्ट वीकेंड एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे था, बट हम वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि मेरा और आपका आमना सामना नहीं हो पाता ऑन वीकेंड्स। तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल कर देते हैं उनके लिए। तो ये जो नेक्स्ट सवाल है उनसे रिलेटेड है, आपको बताना है उनकी डॉटर, उनकी बेटी का पूरा नाम। ओके, फोर वर्ड्स का है, मैं पहले ही बता देती हूँ, पूरा का पूरा बताना है आपको बाई कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है। हमने आपसे सवाल किया था कि प्रियंका चोपड़ा की डॉटर का पूरा नाम क्या है, एंड द आंसर इज माल्टी मेरी चोपड़ा जोनस। थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमने ये स्पेशल सेगमेंट किया था ऑन हर बर्थडे। और आज के जो विनर हैं वो हैं विश्वकांत मूला जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। और जो लोग नहीं जीत पाए, आप लोग भी जरूर जाइए यार फन पिज्जा किचन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मिलेगा अचारी पनीर पिज्जा। और यहाँ पे जब पनीर सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे और अचारी पंच उसमें लगता है, जो स्पाइसी का मैजिक होता है वो मेल्ट होता रहता है पिज्जा। ओए होए होए, क्या ही बताऊँ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं देन तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू। जहाँ जो स्ट्रेट फ्रॉम तंदूर टू योर टेस्ट बर्ड्स, ऐसा मैजिक फील होता है स्पाइसेस का आपके टंग को। तो अगर आपको बोल्ड पसंद है तो भी आप फन पिज्जा किचन जाए, ब्यूटिफुली बैलेंस स्पाइस पसंद है तो भी आप फन पिज्जा किचन जाए, क्योंकि यहाँ का हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है। ये लोकेटेड है फ्रिस्को में। और अगर आपको इस पे कोई और डिटेल चाहिए तो डू विजिट देयर वेबसाइट विच इज funpizzakitchen.com।

और सुनने पाए आप ना कुछ भी फनेशिया के सिवा। जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम। और मैं आपसे अभी कुछ ना हेल्थ वगैरह के बारे में बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है गाइज, आप फिट रहें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहें। आपने असल सुनते होंगे आप लोगों से कि यार बीपी बढ़ गया है, बीपी कंट्रोल में रखना है। और क्या आपको पता है कि ये इतना खतरनाक क्यों है? ये इसलिए भी है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आपको आपके हार्ट से, आपके दिल से बहुत ज्यादा काम कराता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन होता है ये सिर्फ आपके हार्ट को नहीं, किडनीज, ब्रेन और ब्लड वेसल्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि आप अपना बीपी कंट्रोल में रखें। ये था आज का पैशन प्रो प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ से हेल्थ टिप ऑफ द डे। एंड लेट्स लिसन टू अनदर सॉन्ग कमिंग अप।

0: Wow.
1: आई होप कि आप सबको भी फन एशिया के शोज ऐसे ही लगते होंगे. वाओ. एंड नाउ अब हमारे साथ ऑन एयर हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट फ्रॉम उरा एंड वो आपको बताएंगे डेट रिलीफ प्रोग्राम्स के बारे में. हाय अमन, वेलकम टू द शो.
2: थैंक यू वेरी मच. फन एशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. जुलाई की 20 तारीख है और इसका मतलब जुलाई भी बाय बाय कहने वाला है. लेकिन जो गलती आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, अगर इस अगले 10 दिन में कोई पेमेंट क्रेडिट कार्ड की स्केड्यूल है तो जरा उसको रोक लीजिए, थम जाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से उतरते नहीं हैं, लंबे खींचते हैं. और इसलिए अगर आप परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड उतर ही नहीं रहे हैं, हर महीने मिनिमम पेमेंट पे करते हैं इसी डर से कि क्रेडिट ना खराब हो जाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे आप मिनिमम पेमेंट टाइम पर भरते हैं उससे भी क्रेडिट खराब होता है. वो क्यों? क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो हाई है, क्रेडिट कार्ड टोटली फुल है, पूरे खर्च कर चुके हैं. मोर देन 30% अगर आप क्रेडिट कार्ड खर्चते हैं तो आपका स्कोर कम हो जाता है. तो फिर ना सनम मिला ना मसले यार, यानी आपका क्रेडिट भी खराब हो गया और क्रेडिट डेट उतरा भी नहीं. तो इसलिए अगर आप परेशान हैं और माफ कराना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड, माफ का मतलब फ्री फ्री फ्री, जस्ट गिव अस अ कॉल, उरा को कॉल कीजिए. आपके आधे से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाएगा, बाकी जो आधा बचेगा उसकी आसान सी इंटरेस्ट फ्री किस्तें बन जाएंगी. ना सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड बल्कि आपकी गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो चुकी है, जो आपके पास है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ड्राइव कीजिए, एंजॉय कीजिए, सेफ. लेकिन जो गाड़ी रीपोजेस हो चुकी है या टोटल हो चुकी है, उन दोनों केसेस को हम लोग नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं. गाड़ी कोई भी हो सकती है, बड़ी या छोटी, ट्रक या ट्रेलर. और इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल लोन है जो आपने यूरोप की छुट्टियां इस समर में बिताई है ना, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर्जा चढ़ाया है, उसको भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं तो कर लीजिए कॉल. आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा और आधे की आसान सी किस्तें बन जाएंगी. सो सिंपल, डायल कीजिए. मिनिमम पेमेंट करने से पहले हमें डायल कीजिए 1-888-888-9914, 888-888-9914, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555. हमारी वेबसाइट है www.ura.org. बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, लेकिन पैसे देने से पहले एक बार कॉल कर लीजिए, आधा माफ.
1: थैंक यू सो मच अमन. आई होप हमारे लिसनर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग और यू नो यूजफुल होगा. एंड वी विल कनेक्ट विद यू अगेन. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.
1: अब हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे गाने का सिलसिला जारी रखते हैं.

आ गई आ गई। आप कब से बुला रहे थे मुझे एक बारी आओ, तो आ गई मैं और अपने साथ लेके आई हूँ आपके सपनों के साकार करने का मौका। अगर आपका सपना है आपका अपना प्यारा सा घर हो तो ड्रीम होम मोर्टगेज आपकी सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल उनको उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है वो आपको हेल्प करेगी राइट लोन ऑप्शंस फाइंड करने में, जो कि टेलर किया गया होगा आपकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर रीफिनेंसिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो ड्रीम होम मॉर्टगेज से जरूर संपर्क करें। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प करी है उनके एक ड्रीम होम को रियलिटी में कन्वर्ट करने में, 1998 से वो ये करते आ रहे हैं, तब इसी वजह से उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है आज तक। और उनके जो लाइसेंस है वो सारे के सारे 50 स्टेट्स में अवेलेबल हैं, तो आपको कहीं भी घर चाहिए ये आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। आप उनको कॉल कर सकते हैं 972-245-5626 या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए विच इज़ ड्रीम होम मॉर्टगेज.com।

जैसे इस सॉन्ग में दीपिका को देख के ट्रेडिशंस और रूट्स की ऐसे झलक मिलती है, वैसे ही झलक ट्रेडिशन की, एलिगेंस की और टाइमलेस ब्यूटी की आपको श्री कृष्णा की ज्वेलरीज में भी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको मिलता है क्लासिक गोल्ड डिजाइन से लेके स्पार्कलिंग डायमंड्स तक, और इंटीग्रेट कुंदन हो या फिर स्टनिंग पोल की कलेक्शंस हो, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपके स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ा और स्पार्क लाए, थोड़ी और स्पेशल को उसको स्पेशल बनाए यहाँ। और जो श्री कृष्णा ज्वेलर्स है वो तो अब एक नए लोकेशन पे भी आ गए हैं, इट्स इन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को टेक्सास, तो आप जरूर जाइए और वहां की ज्वेलरीज का कलेक्शन चेकआउट कीजिए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
7: Wait, इतना सब और price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional हो या fusion, अब हर outfit बोलेगा.
8: मैं हीरो
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
10: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया।
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
15: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी स्टूडियो में वक्त हो गया है 2:07 और इसके पहले कि मैं अपना गिव अवे राउंड शुरू करूं, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा शो है, दिस इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाई एजे फिनटैक्स विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका कोई स्टार्टअप है या फिर कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजी फिनटैक्स के पास वो सारी सर्विसेज हैं जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकती हैं या फिर आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके टैक्स प्लानिंग वगैरह में मदद कर सकती हैं। और ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो टेलर्ड होते हैं आपकी जरूरतों के अकॉर्डिंग, फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशंस टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। ये आपके फिनेंसेस को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं, कंप्लायंट रखने में मदद करते हैं और आपको सारे फ्यूचर लीगैलिटीज के लिए भी तैयार करते हैं। काफ़ी ट्रस्टेड हैं, इफ़िशियंट है और कमिटेड हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये आपके ना फिनेंशियल पार्टनर बन सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको इनको रीच आउट करना है तो कॉल कीजिए 4699429888 या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज ajfintechs.com। और कुछ गाने एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम अपना गिव अवे राउंड का क्वेश्चन करेंगे आपसे।

अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का, तो तैयार हो जाइए उंगलियां आपके फोन पे, क्योंकि मैं एक सवाल पूछने वाली हूं और अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है और आप जीत सकते हैं द फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका। रेडी? तो ना एक छोटा सा रिडल है आपको, आई थिंक बहुत ईजी रहेगा, बट लेट्स सी कि सबसे पहले कौन बताता है सही आंसर। सवाल ये है कि वॉट एम आई वाला क्वेश्चन है, ओके, कि मेरे पास कीज हैं पर मैं कोई ताला नहीं खोल सकता, मैं क्या हूँ? आपको बताना है कि मेरे पास कीज हैं लेकिन उससे कोई ताला नहीं खुलता, तो फिर मैं कौन हूँ, कौन है वो जो कीज के साथ है लेकिन ताला नहीं खोल पाता? आपको बताना है मुझे बाय कॉलिंग मी एट 9722355555।

हमें हमारे गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है, या फिर कहें तो मिल चुकी है। आज जीता है सुरोमा जी ने फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका। और अगर आप फ्लेवर लाउंज जा ही रहे हैं दोस्तों, तो वहां का मॉकटेल और कॉकटेल जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने किए और मुझे तो काफी पसंद आए हैं। आई होप आप सब भी इंजॉय करें। सवाल ये था आज का कि वो क्या चीज है जिसके पास बहुत सारे कीज हैं लेकिन वो कोई ताला नहीं खोल सकते, कोई लॉक ओपन नहीं होता उनकी से। बहुत सारे जवाब हो सकते थे इसके, मल्टीपल आंसर्स वे करेक्ट, चाहे वो पियानो हो, कीबोर्ड हो। और जब मैंने पहली बार ये रिडल देखा था तो मैंने क्या आंसर किया था पता है? मंकी, क्योंकि उसमें भी तो की है यार, लॉजिकली सब कुछ सही है।

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर से मिलने गए हो, अपॉइंटमेंट वगैरह लेके, और क्लिनिक से या हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही आपको लगा कि अरे यार, ये डॉक्टर जी को तो ये चीज बतानी रही गई, ये तो बता ही नहीं पाए? क्योंकि ऐसा, और ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि जो डॉक्टर्स के साथ हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि 5 से 10 मिनट काफी नहीं होते कि आप अपना सब कुछ उनको बता पाए कि आपके साथ क्या हो रहा था, कब से हो रहा था, आपकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सब कुछ काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले 1-to-1 विद डॉक्टर, और ऐसा होता है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे आपको जो है 30 मिनट्स मिलते हैं डॉक्टर के साथ, जहाँ पे आप उनको सब कुछ बता सकते हैं एज अ फैमिली मेंबर, नॉट जस्ट लाइक अ पेशेंट। और ये जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है, इनके पास बहुत सारी अदर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप अगर आपको कराना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, एंग्जाइटी केयर चाहिए, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं, या फिर कुछ वाइटामिन डिफिशेंसी टेस्टिंग करानी हो तो भी आप जा सकते हैं। और ये सब कुछ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में अवेलेबल है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं उन्हें एट 214-666-6259। आई विल रिपीट द नंबर फॉर यू, इट्स 214-666-6259।

0: वैसे मैं अगर कहूं कि मेरा वक्त हो गया है अब यहां से जाने का, कल फिर आपसे मिलूंगी इसी शो के साथ, दी आफ्टरनून अड्डा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरी तरफ से है अलविदा, बाय बाय, टेक।
1: कहां गया, कहां रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहां है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya, adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: बेटा, 95% आए?
14: हाँ मम्मी।
13: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
13: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: सम जर्नीज बिगिन विद साइलेंस एंड सम बिगिन विद डिवोशन। एट ओशो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बोथ। सीक इनर अवेयरनेस थ्रू ओशोस पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स एंड बाउ your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Ji haan, Monday through Friday, main rehti hoon aapke saath 2:30 PM till 5 PM. Aur lekar aate hain ji music. Toh, of course, music is a very important part of our daily routine right here on Fun Asia Radio. Aur uske saath नया हर तरह का कॉन्सेप्ट, नया चीज, एवरीथिंग इज न्यू एवरी सिंगल डे, ताकि कुछ बोरियत ना हो जाए आपको. और मंडे है जी आज, और मंडे आप जानते हैं इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू एट सुनहरी किरण. आपकी फरमाइशें, आपकी पसंद के गाने, आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस, आपने कोई बात शेयर करनी है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट यू द वंडरफुल ऑडियंस एंड लिसनर्स ऑफ द आफ्टरनून ड्राइव टाइम ऑफ सुनहरी किरण. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. ये है फिल्मी फरमाइश, यानी कि आपकी पसंद, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद हर जे के साथ. कीप दोस कॉल्स कमिंग.

जी हाँ तौबा, तुम्हारे ये इशारे सुन रहे थे आप फ्रॉम द मूवी चलते चलते, और आपकी डेफिनेटली फरमाइशें लाइन अप होने लगी हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. सबसे पहले वी वुड लाइक टू विश शांजी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. शांजी, आप आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपने खुद ही कॉल किया. एंड डेफिनेटली टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी, और अगर आज आप यानी कि 20 जुलाई या पिछले दो चार दिनों में, आने वाले दो चार दिनों में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड दिस इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम मी एंड फाइनेंशियल रेडियो.

All right, a very happy birthday once again, Shazi, and to all of you, Shanzi, and to all of you who are celebrating your birthday today. Acha, aap ek kaam kijiye. Main phone lines meri khuli hain. Agar aap aaj, aap mein se koi bhi jo sun raha hai mujhe, agar aaj apna birthday celebrate karte hain, to phone uthaiye aur mujhe call milaiye, taaki main aapka naam aur number le sakun. I might just have a giveaway for you. Aur agar 3-4-5-6 log birthday celebrate karte hain, to unme se koi ek lucky winner main pick karungi. Wo giveaway kya hoga? वो मैं आपको बताऊंगी जब मेरे पास 3-4 नाम कलेक्ट हो जाएंगे जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. अदरवाइज वी विल गिव दैट बर्थडे टू दैट गिव अवे टू समबडी एल्स. सो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे, पिक अप दैट फोन, गिव मी अ कॉल 972-235-5555. एंड दिस नेक्स्ट नंबर इज स्पेशली गोइंग आउट टू अनीस. अनीस साहब, एंजॉय.

और इस गाने की तरफ जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे कॉल कीजिए. आई माइट जस्ट हैव अ गिव अवे फॉर यू एंड आई डू हैव इट. गिव अवे आया है आपके लिए मिराज लाउंज की तरफ से. अगर आप वही पुराना बोरिंग चारों तरफ रेस्टोरेंट्स में खाना खा के थक गए हैं एंड यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट तो फिर मिराज लाउंज इज द प्लेस फॉर यू. एंजॉय प्रीमियम हुकर्स, डिलिशियस बाइट्स, हैंड क्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और स्पेशली एक्साइटिंग डीजे नाइट्स. इसी के साथ लेडीज नाइट भी होती है मिराज लाउंज पे और कॉलेज नाइट भी होती है. इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन दिस इज द प्लेस फॉर यू टू गो गाइज एंड एंजॉय अ कॉलेज नाइट एज वेल एज सम रियली वंडरफुल क्लासी वाइब्स फॉर यू. और इसी के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि हैप्पी आवर होता है मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 11 AM टू 6 PM फीचरिंग हुकर स्टार्टिंग एट 24.99 एंड शॉट्स फॉर ओनली 4.99. तो बताते चलिए आपको कि मिराज लाउंज इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे और ये वो जगह है जहां आप करने वाले हैं बहुत ज्यादा एंजॉय. फोन कॉल्स आई हमें, बहुत सारे लोगों ने अपनी बर्थडेज के बारे में बताया और जो स्पेसिफिक दो बर्थडेज आज सेलिब्रेट होती हैं जिन्होंने सही टाइम पे फोन किया वो हमारे दो लकी विनर्स हैं. क्योंकि मेरे पास ये गिफ्ट कार्ड है $20 का ऑन अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. सो इफ यू गो देयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड वांट टू एंजॉय देन यू हैव टू स्पेंड $50 एंड देन उसके ऊपर आपको $20 का ऑफ मिल जाएगा डाइन इन ओनली. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द winners who are celebrating their birthday today. That is July 20th. The first is Manika Mishra. Manika, congratulations and a very, very happy birthday to you today. You have won this Mirage Lounge $20 gift card on a minimum dine-in bill of $50. And the second winner is Priya Patel. Priya, congratulations and a very happy birthday to you too. And you have won this $20 gift card from Mirage Lounge on a minimum dine-in bill of $50. Do din ka time dijiye Priya and Manika. Hame do din ka time dijiye aapka naam aur number Mirage Lounge pe pahunchane ka. And then you will have about 5 to 6 days to go to the restaurant and avail your $20 off on your $50 or more bill. Jaiye apne friends ke saath, apni family ke saath aur enjoy kijiye is beautiful giveaway. Once again, to all of you who are celebrating your birthday, a very happy birthday.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
10: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.
11: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Funasia 104.9 FM.

फिल्म तुम बिन से सुन रहे थे आप ये गाना सोनू निगम और अरुण अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। एक बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली सुपर डुपर हिट फिल्म थी ये तुम बिन। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना देखने वालों ने ना बनाने वालों ने कि ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट हो जाएगी, बट देयर इज समथिंग दैट जस्ट यू नो वो कहते हैं ना कि ऑडियंस के साथ स्ट्राइक किया इस मूवी ने। जैसे कि सैयारा मूवी थी जब रिलीज हुई तो शायद ना बनाने वालों को इतनी उम्मीद थी ना देखने वालों को जब वो गए कि इतनी ज्यादा हिट करेगी ये मूवी आपके जज्बात के साथ। सो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि तुम बिन जो है वो कहीं ना कहीं सैयारा जैसी ही हिट हुई उस जमाने में अपने तरीके से और सैयारा इस जमाने में अपने तरीके से। तो जी ये तो हुई है बात और अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर इन टेक्सास और आप ढूंढ रहे हैं फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन तो हमारे पास आपके लिए जवाब है, दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी। जी हाँ, प्राउडली सर्व करते हैं तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सास बिजनेसेस को सिंस 2002। कंपेरेटिव रेट्स हैं, दे हैव रिलायबल सर्विस एंड दे कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स फॉर यू इफ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। सो यू हैव एनी क्वेश्चन आप taraenergy.com पे लॉग ऑन कीजिए। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। वंस अगेन दैट वेबसाइट इज taraenergy.com taraenergy.com या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं विद ऑल योर क्वेश्चंस। दैट नंबर इज 844-428-2808 844-428-2808 is that number.

36 चाइनाटाउन से सुन रहे थे आप ये गाना. द मूवी वाज रिलीज्ड इन 2006. वैसे आपको बताऊं कि 36 चाइनाटाउन में शाहिद कपूर, अक्षय खन्ना, करीना कपूर और साथ ही साथ उपेन पटेल थे, लेकिन ये मूवी की ओरिजिनल स्टार कास्ट ये नहीं थी, बल्कि अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय फाइनलाइज किए गए थे इस फिल्म के लिए. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल पहले या तो अक्षय खन्ना निकले, अक्षय कुमार निकले या अनिल कपूर निकले, और उनकी देखा देखी सारे ही चार लीड्स जो हैं वो छोड़ के चले गए फिल्म. क्या वजह हुई ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद फिर अक्षय खन्ना, शाहिद कपूर, करीना कपूर और उपेन पटेल को फाइनलाइज किया गया. तो फिल्म 36 चाइनाटाउन का एक छोटा सा किस्सा ये भी. अगला गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, उससे पहले आपको बताएं जी, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूएस. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, या आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं शुरू या कर चुके हैं, या फिर यू आर एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अराउंड टेलर किए जाते हैं, फ्रॉम बुक कीपिंग, payroll accounting and bank and credit card reconciliations, साथ ही साथ proactive tax planning, tax compliance, financial reporting और business advisory services. हर चीज आपको provide करते हैं AG FinTechs वाले. They help keep your finances organized, compliant as well as future ready. Trusted hain, efficient hain, they are committed to your success. So do not forget to give them a call. AG FinTechs is your partner in building a strong financial future. That number is 469-942-9888. 469-942-9888 is that number, or you can visit the website, which is AG FinTechs, FINTAX, AGFinTechs.com.

कल होना हो से सुन रहे थे आप ये गाना. और आपको बताऊं कि जी कल होना हो 2003 में रिलीज हुई थी. वैसे ओरिजिनली करण जौहर ने इस मूवी का नाम कभी अलविदा ना कहना था रखा था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके कल होना हो कर दिया. शायद उन्होंने दूसरी मूवी इसी दौरान में डिसाइड कर ली थी कि कभी अलविदा ना कहना फिर बनाऊंगा, और वो बनाऊंगा 2006 में. सो कल होना हो का एक छोटा सा किस्सा ये भी. और अब चित्रा जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना, दिस इज बोलना माही, एंजॉय. और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आकर एक जबरदस्त गिव अवे मेरे पास लाइंड अप है. कहीं मत जाइए, यू हैव अ जैम पैक्ड शो राइट आफ्टर दिस. आई एम हियर विद यू टिल 5 PM.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
7: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
8: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
10: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
9: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
10: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funasia Radio.

जी हाँ, पार्टनर फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना सलमान खान एंड गोविंदा. गोविंदा के करियर के लिए दिस फिल्म इज कंसिडर्ड अ मेजर कमबैक फिल्म और बहुत बड़ी हिट हुई थी और एक हॉलीवुड मूवी की वो कहते हैं डिट्टो कॉपी सी बनाई गई. हॉलीवुड की जिस मूवी की ये कॉपी बनाई गई उन लोगों ने, द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट मूवी एक्चुअली सूड दिस प्रोडक्शन हाउस फॉर प्लेजरिज्म. और यही है आपका नेक्स्ट सवाल जो आपको दिलाएगा नियॉन कैक्टस का ये गिव अवे. $20 का गिफ्ट कार्ड आपके लिए लेके आई हूँ डाइन इन ओनली. सो उसके लिए आपको मुझे बताना है कि ये जो पार्टनर फिल्म थी इसको किस इंग्लिश मूवी से कॉपी किया गया था. सो उससे पहले, बिफोर यू स्टार्ट कॉलिंग मी, आई हैव टू टेल यू, नियॉन कैक्टस आप जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा क्या, ये सब मैं आपको बताती हूँ. कि जी मैक्सिकन फ्यूजन, दिस इज अ प्लेस वेयर मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. दिस इज नियॉन कैक्टस फॉर यू. फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस. वेजिटेरियन है आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे हैव एन एक्सटेंसिव वेजिटेरियन मेन्यू. एवरीथिंग इज पैक्ड विद ऑथेंटिक एंड बोल्ड फ्लेवर्स एंड द वाइब्स आर कलरफुल, यंग, मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी. परफेक्ट है जी हैंग आउट के लिए, डेट नाइट्स के लिए. यू वांट टू मेक अ चिल आउट प्लान, मेक दैट चिल आउट प्लान एट नियॉन कैक्टस. यू आर गोइंग टू लव इट. इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, गाइज गो टू नियॉन कैक्टस, दिस इज द प्लेस फॉर यू. You're going to really, really enjoy the vibe over there. Or top it off with curated cocktails, refreshing mocktails, happy hour Monday to Friday, and special deals every single day. So, ab main aapse sawal dobara se pooch leti hoon. Ye jo partner film ka gana maine aapke liye play kiya, mujhe call karke bataiye ki ye partner film किस मूवी से हैविली कॉपी की गई थी जिसकी वजह से इन्हें कोर्ट में जाके कुछ मतलब इनके ऊपर केस भी हो गया. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

क्या खूबसूरत एनालॉजी है, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मतलब मैं रूबजा हूँ पानी में घोलने तो बहुत ही मजे का कुछ बनने वाला है। ये गाना आप सुन रहे थे, फटा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन सवाल ये नहीं था जी। नियॉन कैक्टस की तरफ से आपके लिए गिव अवे आया था, $20 का गिफ्ट कार्ड फॉर डाइन इन ओनली। एंड आपको मुझे ये बताना था कि मूवी पार्टनर, जिसका गाना मैंने थोड़ी देर पहले प्ले किया था, वो कौन सी अंग्रेजी मूवी यानी कि हॉलीवुड की मूवी से इंस्पायर्ड नहीं, कॉपीड थी, मतलब सीरियस कॉपीड थी। ये प्लेजरिज्म का केस हो गया था इनके ऊपर, और वो फिल्म थी जी विल स्मिथ की मशहूर जमाना हिच। 2005 में हिच मूवी रिलीज हुई थी, जिसे एंडी टेनेंट ने डायरेक्ट किया था। इट वाज अ रोमांटिक कॉमेडी एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर फिल्म। और 2007 में पार्टनर रिलीज हुई, जो कि बिल्कुल कुछ तो वो कहते हैं कि ऐसे सीन्स कॉपी थे, मतलब स्टिकर कॉपी थे, जैसे कहते हैं ना कार्बन कॉपी, जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ। आई गेस बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि हॉलीवुड वालों ने कभी किसी को ऐसे प्लेजरिज्म के लिए सू किया हो या उन पे केस किया हो। दिस वॉज वन ऑफ दोज मूवीज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड द करेक्ट आंसर्स। इंद्रप्रीत, अंकुर, महरीन, किरण, शशि, शीरी, सईदा जी एंड मेनी मोर। अभी भी फोन लाइंस बाज हो रही हैं, टाइम खत्म हो चुका है कॉन्टेस्ट का। और आप जिस तरह नंबर में कॉल करते हैं, जैसे सीक्वेंस में मैं वो मैथ के फॉर्मूले में डाल के आपका नंबर निकालती हूँ, और जो भी लकी विनर होता है उसकी लक डिसाइड करती है। और आज के लकी विनर हैं महरीन यूनस। महरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर नियॉन कैक्टस पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 6 to 7 डेज टू गो टू नियॉन कैक्टस एंड अवेल योर $20 गिफ्ट इन गिफ्ट कार्ड। अच्छा जी, ये आप तमाम लोगों को मैं बताती चलूं कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आप कॉल करते हैं, बात करते हैं, रियली रियली मेक्स मी हैप्पी। और फनी जो इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेके आता है, ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।

हे बेबी से सुन रहे थे आप ये गाना 2007 में हे बेबी रिलीज हुई. दिस वाज ओरिजिनली मतलब रीमेक आप कह लीजिए, एक मलयालम फिल्म का रीमेक था ये. और वो मलयालम फिल्म जो है वो इन इटसेल्फ 1987 की एक अमेरिकन मूवी थ्री मेन एंड अ बेबी से इंस्पायर हुई थी. मतलब इंस्पिरेशन पे इंस्पिरेशन लेयर्स ऑफ इंस्पिरेशन के बाद हमें मिली हे बेबी, और जिसमें हमें नजर आए अक्षय कुमार और साथ ही साथ रितेश देशमुख और विद्या बालन. राइट, तो ये हुई है जी बात. और आपके साथ एक अपडेट शेयर करें कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज प्राउडली सर्विंग एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर कम्युनिटी एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन एंड दैट इज इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये लिनॉक्सी medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics और साथ ही साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी. तो जो कुछ भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ अंडर वन रूफ आपको अवेलेबल है एट लिनॉक्सी मेडिकल. और बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, दे आर ओपन 7 days a week, 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द इवनिंग. तो आपके लिए 7 के 7 दिन ऑपरेट कर रहे हैं आपका ख्याल रखने के लिए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी. वॉक इन कीजिए एनी टाइम. आपको हल्का सा भी अपनी तबीयत के ऊपर शक है तो प्लीज वॉक इन टू लिनॉक्सी मेडिकल एंड लेट देम टेक केयर ऑफ यू. दिस इज टेक्सास प्राइमरी केयर ब्रिंगिंग यू लिनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को. और इसी के साथ अब मैं आपको अगला गाना प्ले करने लगी हूँ. और ये गाना एक बहुत ही मतलब खूबसूरत फिल्म मैं हूँ ना से लिया गया है. बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही मज़े की, फराह खान की डेब्यू ये मूवी. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट.

0: मैं हूना मेजी, पहले ऋतिक रोशन, आयशा टाकिया और नसीरुद्दीन शाह को फाइनल किया गया था, लेकिन लास्ट मिनट पे आयशा टाकिया ड्रॉप्ड आउट एंड उनकी जगह अमृता राव को लाया गया. ऋतिक रोशन जो है वो लकी का रोल प्ले करने वाले थे, बट देन ही डिक्लाइंड फॉर सम रीजंस एंड देन जायद खान वाज ब्रॉट इन फॉर द रोल. मैं हूना का एक छोटा सा किस्सा ये भी. और अब ब्रेक की तरफ जाते हुए मैं आपको बताऊं, सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's आनंद बाजार 2026. कब हो रहा है जी ये? सैटरडे अगस्त 15th को फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कमेरिका सेंटर फ्रिस्को. द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली इंडोर्स और दूसरा ये कि इट इज फ्री फॉर एवरीवन. तो गर्मी की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है और फ्री मतलब टिकट विकेट की भी कोई टेंशन नहीं है. एंजॉय ऑथेंटिक फूड एज वेल एज ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग होगी एंड एन इनक्रेडिबल ड्रोन शो एज वेल एज फायरवर्क्स फिनाले. मतलब दिस इज गोइंग टू बी ग्रैंड. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंट Day celebration, IANT Anand Bazaar 2026. So don't forget to miss out and enjoy your Independence Day with IANT Anand Bazaar 2026.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
9: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
10: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts, rights and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

और यही जलवा दिखाने आ रहे हैं प्रभु देवा। जी हाँ, लाइव डालस में परफॉर्म करेंगे। मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभु देवा लाइव इन DFW, और उनके साथ होंगी लॉरेन एज वेल एज सोनल अलेक्जेंडर नोयल, हरिनी, नताशा शर्पा एज वेल एज सानवी मेघना। अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट होने वाला ये, विथ सच बिग एंड सच इम्पोर्टेंट नेम्स इन द डांसिंग वर्ल्ड। और ये सब जब एक स्टेज पे होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा उस स्टेज के ऊपर। बिल्कुल मिस मत कीजिए उस मोमेंट को, उस एंजॉयमेंट को, उस हैप्पीनेस को जो आपको मिलेगी। दैट इज हैपनिंग ऑन सैटरडे ऑगस्ट 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड प्रेरी। आप अपने टिकट्स आज ही बुक कर सकते हैं। गिव एट दिस नंबर, यू हैव टू कॉल इट दिस नंबर एंड बुक योर टिकट्स। दैट नंबर इज 248-233-3828। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 248-233-3828। ये है वो नंबर जहां आप कॉल कर सकते हैं। प्राउड पार्टनर इज फनएशिया नेटवर्क। और आपको मैं ये भी बताती चलूं जी कि फनएशिया का जो नेटवर्क है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पे आप जाइए और वहां पे आपको डायरेक्टली पिंड पोस्ट्स मिलेंगी ऑफ हाउ टू बुक योर टिकट्स। सो चेक आउट सोशल मीडिया, यू नो फनएशिया सोशल मीडिया पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन एवरीवेयर दैट वी आर ऑन सोशल मीडिया, और वहां पे पिंड पोस्ट हैं फॉर यू टू ईजिली बाय your tickets. But that number to buy your tickets again is 248-233-3828. This is Prabhu Deva live in concert on August 1st, that is Saturday, at Texas Trust CU Theatres, Grand Prairie.

और इसी के साथ जी अब टाइम आ चला है आपको वेदर, ट्रैफिक एज वेल एज गोल्ड प्राइस और करेंसी अपडेट देने का. यूजुअली हम 4:30 के बाद ये वाला सेगमेंट लेके आते हैं, बट ऑन मंडेज इट इज ब्रॉट टू यू फ्रॉम 4 to 4:30 PM बिकॉज 4:30 से 5 तक हमारे साथ कनेक्टेड होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेज, और वो हमें बताएंगे, आपके क्वेश्चंस लाइव लेंगे रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लॉ एज वेल एज इंजरी, फैमिली, इमिग्रेशन, जो कुछ भी आपका सवाल है. वी विल बी हेयर लाइव ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस डायरेक्टली विद द संजय माथुर, माथुर लॉ ऑफिसेज के संजय माथुर जी. तो वो तो हुआ आपके लिए वो बात. तो अब मैं आपको दे रही हूँ वेदर की अपडेट राइट नाउ मंडे जुलाई द 20th 4:15 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 96 degrees एंड इट फील्स लाइक 104. सो ट्रिपल डिजिट फीलिंग आ रही है इस वक्त. दिन रहा सनी हॉट विद हाईज इन द अपर 90s जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द अपर 70s. Although it's going to be humid, और आज का जो pollen count है that is 4.9. तो 4.9 आपका pollen count हुआ. Grass is one thing that is bothering in pollen, so अगर आप इससे परेशान होते हैं तो please be careful. साथ ही साथ UV index is extremely high, which is 11. Keep your sunscreens handy. Keep yourselves hydrated if you are planning to go outside in the evening. Sunrise आज का हुआ 6:31 AM पे, जबकि आज का sunset होगा 8:34 PM. That was your weather forecast. और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो we will get currency, gold price as well as traffic.

और ट्रैफिक अपडेट आपको देने लगी हूँ और साथ साथ बताती चलूँ, दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. एन एक्सीडेंट कैन हैपन इन सेकेंड्स यू नो, बट रिकवरिंग फ्रॉम इट कैन टेक मच लॉन्गर. और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार क्रैश में या फिर ट्रक एक्सीडेंट में या फिर किसी भी स्लिप और फॉल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, द लीगैलिटीज, द पेपर वर्क. यू डोंट वांट टू डू दैट. आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम टेक केयर ऑफ द रेस्ट. दे विल फाइट योर केस, help you get the best compensation that you deserve. And the best part is ke aapko kuch pay karne ki zarurat nahi jab tak ke aap case jeet nahi jate. So it is a win-win situation for you. It is pareshani ki ghadi mein rahat ki khabar hai ye aapke liye. Umar Khwaja, attorney Umar Khwaja aur unki team jo hai is always here to help you and guide you throughout the process. Give them a call if you have any questions. 469-300-5046, 469-300-5046 unka number, ya phir aap unki website visit kar sakte hain. फ्री कंसल्टेशन देते हैं वो जी. वेबसाइट इज अटर्नी ओमार, OMAR, attorneyomar.com. और ट्रैफिक की आपको अपडेट देते चलें, विच इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. एक कोलिजन हमें नजर आ रहा है IH-30 पे टुवर्ड्स डालरॉक रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 3 out of 7 लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. अ लॉट ऑफ बैकअप इज रिपोर्टेड एट दिस स्पॉट. इसी के साथ एक डिसेबल्ड व्हीकल नजर आ रही है जी, 35 ईस्ट एट हाई लाइन ड्राइव एंड विक्ट्री एवेन्यू साउथ बाउंड. इस डिसेबल्ड व्हीकल की वजह से 1 लेन इज ब्लॉक्ड. ऑल्दो severity is minor, however aapko pata hi hai ki rush hour mein even ek single lane bhi band ho to traffic backup hone lagti hai, so be careful if you are there. There is also a scheduled construction which is going on at 35 east towards Mockingbird lane southbound, jiski wajah se 2 lanes are blocked including the exit lane. So that is pretty much all that we have for you where traffic is concerned right here on the airwaves of Fun Asia Radio.

And with that, it is time for currency update. Currency ke baare mein aapko bataye ji, US dollar kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world right now. According to xrates.com, euro 0.87 pe trade kar raha hai, British pound 0.74, Indian rupee 96.48, Canadian dollar is on 1.40 with respect to one US dollar. Pakistani rupee 277.93 pe trade kar raha hai, jabke Nepali's rupee 154.44 pe stand kar raha hai. Aur isi ke saath Bangladeshi taka 123.36 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. और गोल्ड प्राइस अपडेट के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. गोल्ड प्राइस पर आउंस राइट नाउ अकॉर्डिंग टू goldprice.org इज $4,008.09 और गोल्ड प्राइस पर ग्राम राइट नाउ इज $128.86. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 13 सेंट्स का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $4.02 का इजाफा हुआ. बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस इज कंसर्न्ड राइट हियर ऑन सुनहरी किरण. वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक विद दिस सॉन्ग एंड आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल कनेक्ट विद संजय माथुर जी, अटर्नी संजय माथुर फ्रॉम द लॉ ऑफिसेज ऑफ माथुर. माथुर लॉ ऑफिसेज के साथ हम कनेक्ट करेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे लाइव. You keep those calls coming. Aur agar aapko main hold pe dalun while you're calling and I put you on hold and you can hear Mathurji, Sanjay Mathurji replying to a previous question, to aap next hain line mein. Please apni line drop mat kijiyega. Hold on, have some patience and keep your line, keep yourself on the line so that I can take you as soon as Mathurji ka jawab khatam hota hai, I will take you on air. Just have some patience and hold the line if you can hear him.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: जीत उनकी होती है, जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो.
13: बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
14: क्या?
13: सैलरी बंद हो जाती है
14: और बिल्स बंद नहीं होते.
13: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
14: मतलब
13: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
10: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
17: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
6: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funisia Radio.

All right, जी, ये टाइम है डेफिनेटली अटर्नी संजय माथुर से कनेक्ट करने का विद द माथुर लॉ ऑफिसेज. कुछ डिफिकल्टी हमें लाइन कनेक्ट करने में हो रही है. जैसे ही संजय माथुर जी हमारे साथ लाइव होंगे, मैं आपको उनके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करूंगी. बने रहिए और कीप दोज यू नो क्वेश्चंस रेडी. एज सून एज ही इज विद अस ऑन एयर, यू विल बी एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस लाइव राइट हियर.

All right, जी, ये सलमान खान का गाना बेबी को बेस पसंद है, सुन रहे थे आप सुल्तान फिल्म से. अच्छा, सलमान खान के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ. फिलहाल मैं आपको माथुर लॉ ऑफिसर्स के बारे में बताती चलूँ. हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं एवरी मंडे 4:30 PM टिल 5 PM संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसर्स. आज हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक जो है थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज चल रही हैं. ही इज प्रॉब्ली बिजी इन अ मीटिंग एज वेल, सो दैट इज वाई वी कुडंट connect to him. So unfortunately Mr. Mathur will not be with us today, jo ki unka 5 pm tak ka time hota hai jahan aap call karte hain hame aur apne questions poochte hain live about civil litigation, criminal law, injury as well as family and immigration law. But no problem at all, next week he will be with us 4:30 PM till 5 PM right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran on Mondays. But let me give you a number if you have a urgent question, an important question that you need to ask, then unke office mein is number pe call kijiye, consultation apni book karaiye, and that number is 214-378-8880. Ye hai number ji, you can call them, book your consultation and have your questions. This is 214-378-8880. Ya phir aap unki website bhi visit kar sakte hain, that is mathurlawoffices.com. यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उनके बारे में. व्हाट आर देयर प्रैक्टिस एरियाज, हु आर द लॉयर्स, हाउ कैन दे हेल्प, देर आर टेस्टिमोनियल्स, देर आर अदर इंफॉर्मेशन, देर आर ब्लॉग पोस्ट, बहुत कुछ. फुल ऑफ इंफॉर्मेशन इज दिस वेबसाइट विच इज माथुर लॉ ऑफिसेज डॉट कॉम. सो दैट वॉज दैट. और सलमान खान का जो ये गाना मैंने आपके लिए प्ले किया, अभी आपको बताती हूँ कि सलमान खान की क्यों आजकल सुर्खियों में है या खबर में है. लेकिन इस गाने के उस पार याद रखिए, आई विल टॉक अबाउट सलमान खान. आज पिछले आई थिंक एक दो दिन से काफ़ी खबरों में है सलमान. व्हाई? आफ्टर दिस सॉन्ग.

जी हाँ, गाने पे जाते हुए आपसे कहा था कि बताऊंगी आपको कि सलमान खान क्यों न्यूज में दोबारा हैं। अभी कोई इवेंट हुआ और सलमान खान ने उसमें अपेयरेंस दी और ऑडियंस को या उनके जो फैंस हैं वो थोड़े से परेशान हो गए उनकी लुक देख के, बिकॉज ही लुक्ड टायर्ड, ही लुक्ड लाइक काइंड ऑफ कि थोड़े से कुछ परेशान हैं या बीमार हैं या समथिंग लाइक दैट। तो लोगों ने उनकी उस पोस्ट के नीचे लिखना शुरू कर दिया कि भाई आई होप ही इज़ ओके एंड माई हीरो इज़ गेटिंग अ लिटल ओल्डर, वट हैज़ हैपन टू भाई जान, एंड सो मेनी पोस्ट जो आई। तो उसके बाद सलमान खान ने भी एक आप कह लीजिए क्रिप्टिक सी पोस्ट लिखी और बस अपनी पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा कि आई होप यू गाइज आर ओके, या आई थिंक आपकी तबीयत कैसी है, कुछ इसी तरह का उन्होंने सवाल लिखा अपनी पोस्ट में कि आप सबकी तबीयत कैसी है। तो उसके नीचे फिर लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, कुछ ने कहा जलने वालों को जलने दीजिए, मतलब जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन सलमान खान दो तीन दिनों से इस पोस्ट और इस खबर को लेकर चर्चा में थे सोशल मीडिया और नेटिजन्स के दरमियान कि सलमान खान कुछ कमज़ोर लग रहे हैं, कुछ बीमार लग रहे हैं। सो वी होप दैट ही इज़ डूइंग बेटर एंड इन गुड हेल्थ। सो ये हुआ आपके लिए एक छोटा सा सलमान खान का किस्सा। और अब आपके लिए जो गाना प्ले करने लगी हूँ वो इस हवाले से करने लगी हूँ जी कि एक नई फिल्म आ रही है, फाइनली रिलीज डेट उस फिल्म को मिल गई है और ये मूवी है मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी की। पहले आप हुमा कुरैशी पे पिक्चराइज्ड एक गाना सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म को क्यों डिले किया गया और क्या हो रहा है इस फिल्म के साथ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
11: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
16: हेलो टेक्सस परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
18: BBC News, I'm John Shea.
11: Britain's new Prime Minister, Andy Burnham, has made key appointments to his government and sacked or moved many of his predecessor's ministers. A former leader of the Labour Party, Ed Miliband, has been given the senior role of Foreign Secretary. In a speech at Downing Street earlier, Mr Burnham promised a new political and economic model and outlined his values and standards.
18: I will put the care of people at the heart of everything I do. I will give this my all, and I ask you all to pull with me. Let's build a new national sense of unity, of common purpose and positivity. Let us make this the moment when Britain starts to believe again, the moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
11: The United States military says it's launched another wave of attacks on Iran, hours after President Trump said that the Iranians would pay many times over for every American soldier killed. They say that the strikes were designed to punish the Revolutionary Guard for attacking US forces in Jordan and to degrade Iran's ability to threaten shipping in the Strait of Hormuz. The social media influencers Andrew and Tristan Tate have appeared in court in the US in connection with an investigation by the British authorities into alleged sex trafficking and other offences. The Tates deny any wrongdoing. Here's Tom Bateman.
19: Andrew and Tristan Tate stood before a federal judge. They wore light brown prison uniforms and were handcuffed and shackled at the waist and ankles. They spoke only when asked if they understood their rights, to which they replied together, "Yes, Your Honour." The highly controversial brothers, known for their influence in the so-called online manosphere, were arrested by US Marshals in Miami on Saturday after the Crown Prosecution Service in England said it decided to prosecute them for further alleged offences, including rape and offences relating to sex trafficking.
11: The chess player Judit Polgár has rejected the offer of becoming Hungary's next president. The Prime Minister nominated her after his government ousted Tomasz Sulyok from the largely ceremonial role. Joanna Keane reports.
20: Péter Modrý was hoping to dismantle the last bastions of power of the former Prime Minister Viktor Orbán, who suffered a crushing electoral defeat in April. First, his party passed a constitutional amendment, removing the president, who was accused of being Mr. Orbán's puppet. Then he nominated the greatest ever female chess player, Judit Polgár. Critics said there hadn't been a broad public consultation. She said she didn't have the strength to take on the historic responsibility of uniting a divided nation. Péter Modrý said he regretted but respected her decision.
11: World News from the BBC. Prosecutors in Britain have charged a 28-year-old man from Northern England with the murder of the

This part of the show is brought to you by our drive time sponsor, jinka naam hai attorney Omar Khwaja. This is a name that you need to have handy, kyunki zindagi mein musibat kab aati hai, wo knock karke nahi aati bhaiya. And kamyabi jo hai, wo to kadam chumti hai. But kamyabi se bhi ek sawal hai ki ye kadam kyun chumti hai? Body ka aur part hai, haath waath chum le, matha chum de. But kamyabi ko bhi shauk hai, niche jana hai, usko pairon wali cheez, shayad uska koi fetish hoga. But nonetheless, agar aapko ye naam yaad rakhna hai, uski wajah ye hai ki कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई स्लिप एंड फॉल हो जाए, जो कि हम उम्मीद करते हैं कभी भी आपको ये मुसीबत ना झेलनी पड़े. बट इफ यू एवर आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा इज द पर्सन यू नीड टू हैव हैंडी, क्योंकि दे कैन हेल्प यू आउट इन दैट ट्रबल टाइम. चाहे हो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, आपकी गाड़ी का रिपेयर, आपकी जॉब लॉस, दे विल मेक श्योर दैट यू गेट वेल कॉम्पनसेटेड फॉर इट. बिकॉज व्हाई विल दे डू इट? दे आर द एक्सपर्ट्स, दे नो हाउ टू डू इट, दे नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन क्वाइट वेल. दे हैव डन इट न्यूमरस टाइम्स बिफोर एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट पे अंटिल यू विन योर केस. सो विन विन सिचुएशन है. नाम याद रखिए, अटॉर्नी ओमर, एंड ऑन द वेबसाइट इज अवेलेबल, विच इज अटॉर्नी ओमर.com.

देखो छुट्टियों में ना एक ही परिवार पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जब भी छुट्टियां आए, चाहे लॉन्ग वीकेंड आए, शॉर्ट वीकेंड आए, और ज्यादा लंबी छुट्टियां आए, तो इजी रहना चाहिए ना। हर बंदे को साथ साथ मिलकर काम करना है। तो आपने क्या करना है कि बीवी को मायके भेजो, बच्चों को नानी के घर, और आप खुद ससुराल चले जाओ। Never put pressure on one single person, man. Divide the jobs and see how life becomes so much more easier. You're listening to the Evening Drive Time Show right here on Fun Asia Radio. 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आज मौका था तो मैंने कहा चलो मार देते हैं चौका। मंडे की शाम है जी, July 20th, and we are what a wonderful football World Cup we saw. We never thought that a lot of people had their doubts कि हाँ स्पेन जीतेगा, some majority of them but were with Argentina, which I don't deny, man. Messi and the whole history was in favor of Argentina, but Spain 38 game unbeaten, man. So they are bringing some power with them as well, and that's what they did. Spain played very well. They won the game. They achieved to win it. It was a different game on Saturday as well. France and England, which was with full of goals, 6 goals from England, 4 from France. A very good fighting game there as well. But India versus England, tisra jo test tha, that also England won. 2-1 is the series now, and now we head to Zimbabwe. एंड जिम्बाब्वे के लिए जो कोच हैं जी टेम्परेरली चेंज किए गए हैं, गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण विल बी देयर। बट दिस संडेज गेम बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, इंग्लैंड मेड 387 फॉर 3 इन देयर 50 ओवर्स। Wonderful gameplay, wonderful batting by the batsmen from there. Jay Root and the other guys, Ben Duckett did so well. Jacob Bethel did great as well. 91 of 93, Ben Duckett 141 of 135, Joe Root. But England came back strong. Ek time pe laga tha ki England ye game jeet jayega, but 360 for 7. We were defeated by 27 runs. हार्ड डिफीट नहीं बोलूंगा, दुख भरी डिफीट जरूर बोलूंगा, क्योंकि इतना पास आके हारना किसी को अच्छा नहीं लगता। बट दैट्स व्हाट अ गेम इज। अगेन क्रिकेट वन दैट डे, सॉकर वन दिस सैटरडे एंड संडे, एंड वी ऑल गॉट टू विटनेस हिस्ट्री इन द मेकिंग। फॉर नाउ लवली ट्रैक कमिंग योर वे, एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स। इफ यू हैव नॉट डन योर टैक्सेस येट, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। गेट ऑन द वेबसाइट, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, and make sure to make them your preferred choice when it comes to getting your books right with Uncle Sam. Ya fir retirement ki ho aapko need, or financial planning, they do it all.

0: And this part of our show is brought to you by Page 3 Eatery, bringing you this birthday wish to Gracie Singh as well. From fizzling kebabs to favorite chaats, your fusion bites of refreshing mocktails and cocktails. If you haven't been to Page 3 yet at Hub 121, you're seriously missing out. This is the place where you need to go. Check out some yummalicious Bombay-style food. You won't be disappointed.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi, ab sab kuch milega ek hi jagah, HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo aapko yahan pasand hai. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer, zaroor dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayen aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB, here everything is better.
3: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
5: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
2: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता है?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब। Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
12: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

0: रफ़ी साहब की सोलफुल आवाज़ इस गाने को और खूबसूरत बना देती है, साथ साथ जो वादियाँ हैं इस फिल्म के गाने में ज़बरदस्त हैं जी। एंड दिस वाज द मूवी विच वॉज सारा बानू जी के साथ, झुक गया आसमान। इफ़ यू हैवन सीन दैट गो चेक इट आउट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हु, ये मैं नहीं बताऊंगा, कोई कॉलर है मेरे साथ, ये जुड़ेंगे और बताएंगे। गुड इवनिंग टू यू, थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग, व्हाट्स योर नेम?
1: हेलो,
0: हाय, गुड इवनिंग।
1: Hi, good evening, Marvin. How are you doing?
0: I am doing fantastic. आप बताइए कैसी हैं? बचपन की चोटें हैं मेरी कुछ, वो कभी कभी उभर आती हैं, मतलब ब्रेन में ट्विच करती हैं, बाकी सब ठीक है। आप कैसी हैं और आपका नाम क्या?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मेरा नाम वंदना है।
0: वंदना जी, क्या बात है, वेरी नाइस। तो मेरे को जवाब देने के लिए कॉल कर रही हैं, आई एम अज्यूमिंग?
1: I think so. मैं होल पे थी, लेकिन आपसे बात हो रही है, तो इज इट राजेंद्र कुमार?
0: इज इट राजेंद्र कुमार कह रही हैं वंदना जी। वंदना जी, आप फ्रिस्को जा सकती हैं?
1: हेलो,
0: आप फ्रिस्को जा सकती हैं वंदना जी? कैन यू गो टू फ्रिस्को?
1: मैं फ्रिस्को में ही रह रही हूं, तो बिल्कुल जा सकती हूं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने पहले कभी फन पिज्जा किचन ट्राई किया?
1: नहीं, हाँ, फन पिज्जा किचन ट्राई किया है फॉर पिज्जा, लेकिन विन नहीं किया कभी।
0: विन नहीं किया कभी, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका आज ही मौका हो। आपने पूछा है राजेंद्र कुमार, इट इज एब्सोल्युटली राजेंद्र कुमार, उन्हीं का जन्मदिन है आज, उन्हीं का ये गाना था। एंड टू मी आई थिंक ही वाज वेरी फाइन एक्टर्स ऑफ हिज टाइम। एंड अगर कुछ फिल्मों की बात की जाए, यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी वंदना जी, व्हाइल आई टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर, पतंगा, जोगन जैसे कि मैंने कहा, एंड देन वचन 1955, देन केम आउट मोर मूवीज जैसे कि धूल का फूल, उसके साथ साथ एक और हिट था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, मोहम्मद रफी साहब का एक और गाना। एंड ये ही जो स्टोरी है जी और लाइफ लाइन है, हम बात कर रहे थे राजेंद्र कुमार साहब की। वेरी हैप्पी हेवनली बर्थडे टू हिम, थैंक यू फॉर गिविंग अस सम लवली मूवीज टू चेरिश। एंड यस वंदना जी, यू हैव वन योरसेल्फ द $10 फ्रॉम फन पिज्जा किचन। यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी व्हाइल आई टेक माय ऑडियंसेस टू अनदर सॉन्ग। और ये गाना भी उनकी ही एक फिल्म से है, एंड आई वांट टू प्ले अ लिटिल बिट ऑफ दैट एज वेल बिफोर वी एंड हिज बर्थडे सेगमेंट। हियर वी गो।

0: मेरे दोस्त की ना अभी थोड़ी देर पहले शादी तय हुई है, और वो पंडित वंडित बुलाते हैं, और वो क्या कहते हैं कुंडली को मैच करवाते हैं, तो कुंडली मैच हो रही थी, तो पंडित जी ने बोला कि बधाई हो जी, आपके लड़के के तो 36 में से 32 गुण लड़की से मिलते हैं। भाई गॉड, उसका फोन आया मुझे, मुझे कहता महाराज ये पंडित आया तो मुझे सही है कि मेरे में कुछ गुण भी हैं, और वो भी 22 या 32। वाह, मैंने कहा हाँ भाई, वैसे तो दिखने नहीं।
1: Give me what you got, all your money, money.

0: was the track that is Champagne. The gaane ka naam hai Champagne song from the movie Alpha. Sharwari and Roshan Abid produced the music for this track. Today also marks the birthday of another legendary actor, but I'm going to talk about him a little while later, and that's going to be in the next upcoming break. But usse pehle, if you are going through, or if you've had a surgery in life, you know, a recovery through therapy is very important. Like, I've had a couple of surgeries. I have a hip replacement and an ankle surgery, and the hip replacement went very well because I had one person on my side, and his name is Rushi. Now, Rushi runs this practice, jiska naam hai Texas Star Rehab and Performance Center. They are proud to announce their new state-of-the-art Frisco location, which is a brand new location. Chahe orthopedic sports injuries ho to pelvic floor therapy, massage therapy and rehabilitation, sports medicine, red light therapy and functional nutrition. They deliver personalized one-on-one care, which is designed to help you perform at your best. And I am telling you that if you go there, they actually take the time to help you get recovered fast by giving you all the recommendations, suggestions, and of course helping you through that rehab process. Visit TexasStarRehab.com. That's the website, TexasStarRehab.com. Schedule your consultation today. Conveniently serving Frisco and Irving. They have another location in Irving. Move better, feel better, live better, and always, always get your therapy done after a surgery. It is the most important thing, and if you neglect that, that will bother you for many, many years to come. Rushi is the name of the gentleman there. He's also the physiotherapist for the Texas cricket teams, the Chennai Super Kings and all those in the WLC cricket. He's also their therapist, so you know that you are in good hands. After a break, I'm coming back. Don't go nowhere.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Chicken ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट. एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
5: बैठ जाऊं पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो.
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
8: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक उनके जिम्मेदारी।
15: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
16: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

एक ना फिल्म आई थी हद कर दी आपने, उसमें ना बड़ा प्यारा डायलॉग था, कादर खान साहब बूढ़े हैं और उसमें वो है एक और एक्टर हैं कादर खान और गोविंदा, एंड गोविंदा के पापा कौन बने थे मैं भूल गया हूँ, वनराज, वनराज। उसमें चक्कर क्या होता है कि जो वनराज होता है कादर खान का बेटा, वो बड़ा गुस्से वाला होता है और इनके ना लास्ट नेम लगता है सिंह। तो आपको सिंह से बताऊँ कि ये जो जंगल का भी राजा है, देखो वो शेर है, अब शेर जंगल का राजा होने के बावजूद भी किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता पूरे जंगल में, सिर्फ अपनी शेरनी से डरता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप भी अपनी बीवी से डरते हो मेरी तरह, तो आप सब लोग शेर हो ब्रो, शेर, कोई शेर, कोई सवा शेर, कोई बपर शेर। सो डोंट फील शाय व्हेन बीवी से वाए, जस्ट से ओके। फिल्म का नाम था हद कर दी आपने, जिसमें वो डायलॉग था, उसमें बुलाते हैं वनराज बाहर निकल, वनराज ऐसे ऐसे करके, और इसमें एक्टर होते कौन कौन से हैं, इसमें होते हैं गोविंदा साहब, कादिर खान साहब, और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ जो उनके पापा बने होते हैं। खैर, तो उस फिल्म में ये डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपने अगर वो सीन देखा है तो आपको याद आ गया, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके वो फिल्म देखे, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वेलकम बैक टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट इज़ 6:25 नाउ, 6:25 स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं जनाब। थोड़ी देर का सफर जो है मेरे साथ आपका और है, एंड वी विल डेफिनेटली इंजॉय दिस, ये जो 20-40 मिनट और है हमारे पास, 30-35 मिनट्स, विल मेक श्योर वी इंजॉय दोज एज वेल। अब कैसे करेंगे इंजॉय भैया, गिव अवेज कुछ मैं दूंगा, गाने मैं अच्छे सुना ही रहा हूँ, आपकी रिक्वेस्ट को भी लाइन अप कर रहा हूँ। अगला जो आने वाला है जी गाना, दैट इज अनदर वंडरफुल ट्रैक, एंड दिस इज इन सेलिब्रेशन ऑफ अ बर्थडे। आज के दिन हम एक इंसान का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनका इंडियन सिनेमा से बहुत लेना देना है। ही इज बॉर्न ऑन टुडेज डेट 20th of July, 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनके पास, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, अ वॉल्पी कप ऑफ बेस्ट एक्टर वेनिस फिल्म फेस्टिवल से मिला हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पद्मश्री दे चुकी है इनको, एंड ये जो एक्टर हैं इनको मैं तो कहूँगा पूरे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, एंड आई एम गोना प्ले अ ट्रैक फ्रॉम वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स जो कि रिलीज हुई थी 1983 में। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, रिमेंबर दैट दिस गिव अवे इज कमिंग टू यू फ्रॉम इंडिया बाजार, दिस इज द इंडिया बाजार दैट इज नाउ ओपन इन फोर्ट वर्थ, एंड दे आर गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू विन अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम देम। और इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना है, एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर दिस गिफ्ट हैम्पर बिकम्स एब्सोल्युटली योर्स। फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, हम इस सब के लिए जानते हैं इंडिया बाजार को। नाउ दे आर लोकेटेड ऑन 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ, फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, योर ग्रोसरी हेडेक्स आर ओवर, आपकी ये परेशानी ओवर हो चुकी है, ये स्टोर आपके लिए आ चुका है, एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर टुडे यू आर गोना विन अ स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार। हियर इज द सॉन्ग, यू टेल मी हूज बर्थडे इट इज इन रेफरेंस टू दिस ट्रैक। स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. Please make sure when you're calling me, you're able to get to Fort Worth and enjoy this gift hamper from India Bazaar.

0: ऑल राइट कॉलर कॉलर नंबर कॉलर हेलो कॉलर कॉलर नंबर थ्री है जी, जो मेरे को देगा सही जवाब जी वो जीतेगा जी। ये क्या जीतेगा? ये जीतेगा इंडिया बाजार खुला है ना फोर्ट वर्थ में, उसका गिफ्ट हैंपर जीता जी। कौन बोल रहे जी? गुड इवनिंग
1: जी, आपकी भाभी बोल रही हूँ जी।
0: कौन बोल रही हैं?
1: भाभी जी।
0: भाभी जी कैसी हैं आप? सब ठीक है जी?
1: जी आपका सही जवाब है नसीरुद्दीन शाह।
0: मेरा सही जवाब है नसीरुद्दीन शाह। देखते हैं जी आप सही के कोई और सही। कौन बोल रहा है दूसरी लाइन पे? रेडियो का वॉल्यूम कम जी, अपना उठाना जी। कौन बोल? नहीं नहीं, रेडियो का वॉल्यूम कम नहीं किया आपने, देखो फिर आगे जाना पड़ेगा। कौन बोल?
2: मैंने कर दिया।
0: अब मैं डायलॉग चेंज कर, आगे जाना पड़ेगा। बड़े भाई जल्दी बोलो, कौन बोल रहे? नाम क्या बड़े भाई आपका?
2: तेजस।
0: जैसे जैसे तेजी से आपका नाम तेजस है, वैसे वैसे तेजी से मैं अपने जो डायलेक्ट है वो चेंज करता रहता हूँ। तेजस भाई नाम मालूम है आपको? इस सेक्टर का किसकी बात कर रहा हूँ मैं?
2: नसीरुद्दीन
0: शाह साहब की बात कर रहा हूँ, तेजस कहते हैं यो बात। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन है लक्की वाला। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, कौन बोल रहा है?
3: चेतन पटेल।
0: केतन पटेल? केतन नहीं चेतन।
3: हाँ चेतन, चेतन।
0: चेतन जी कैसन, सब ठीक बा?
3: हाँ बस सब ठीक, आप बताओ।
0: बस चल लिया है, दुकान खुली है, काम चल लिया है। ये बताओ कि आर्टिस्ट का नाम मालूम?
3: हाँ नसीरुद्दीन शाह।
0: नसीरुद्दीन शाह, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं?
3: नहीं नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ।
0: अच्छा बता रहे हैं, तो ऐसे बोलो ना नसीरुद्दीन शाह, क्वेश्चन क्यों रख रहे हो आगे? नसीरुद्दीन शाह, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ आप फोर्ट वर्थ में रहते हैं?
3: हाँ रहता हूँ मैं।
0: वेरी गुड,
3: फोर्ट वर्थ में।
0: वेरी गुड, फिर तो मुबारक हो आपको, इंडिया बाजार आपके मोहल्ले में खुल चुका है और आपको मिला है जनाब उनकी तरफ से गिफ्ट हैंपर। वाली वाजी वाह, तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां। आप होल्ड करेंगे मेरे लिए चेतन, आई टेक यू इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। यस इट इज दिस लेजेंडरी एक्टर जिनको मैं बोलता हूँ जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड। इनकी ना मेरे को सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि ये जवानी में भी बूढ़े थे और बूढ़ियों के भी बूढ़े। खैर नसीरुद्दीन शाह साहब आज ही के दिन जन्म हुआ था, 20th of July 1950। बहुत सारी हिंदी फिल्में इनके नाम पे हैं, जैसे कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया, त्रिकाल, भावनी भावनी, जुनून, मंदी, मैनी मैनी मोर। मतलब लिस्ट में इनका नाम खत्म ही नहीं होता। बट मासूम, जिसका आपने ये गाना सुना, वाज वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स। ये 1983 में आई थी, सेंट जोसेफ्स स्कूल कॉलेज राधा नैनीताल में इसको शूट किया गया था। उसके बाद एक और कल्ट कॉमेडी आई जाने भी दो यारों, देन आई जी और फिल्में जैसे कि इजाजत, जलवा, हीरो हीरा लाल, एंड आई थिंक इन हीरो हीरा लाल ऑल्सो हिट अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल रोल। नॉनदलेस वी आर सेलिब्रेटिंग दिस legendary actor from Bollywood, giving us countless memories and cherishable moments. A very happy birthday to Mr. Nasiruddin Shah from the team here at Fun Asia and from Banda Bindaas.

दिल तो बच्चा है जी, और जितना बच्चा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ये मेरे पिताजी कहते हैं मुझे कि जब तक बच्चा रहेगा अच्छा रहेगा। सही कहते हैं ना यार, आप लोगों का क्या सोचना है? मेरा ख्याल जब तक दिल में बच्चा रहे उतना ही अच्छा रहे। द चाइल्ड इन यू शुड नेवर डाई मैन, एंड दैट इज़ वॉट वी डू हियर एट फनेजिया, स्पेशली विद माई शो। कोशिश यही होती है कि आपको हंसते खिलाते आपके घर तक पहुँचाएँ, वेर एवर यू ड्राइविंग टू, वेर एवर इज़ मंजिल, उस तक आप बड़े आराम से पहुँचे एंड एक स्माइल के साथ पहुंचे। आई एम गोना बी टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आफ्टर एक और गाना जो कि मैंने आपके लिए लाइनअप तो कर रखा है, बट आज ही के दिन अगर इतिहास की बात करूं, टुडे वाज द डे व्हेन सर एडमंड हिलरी, ही वाज द वन हु वाज द फर्स्ट गाय टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट विद तेंजिंग नॉर्गे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम समबडी क्लाइंब द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। द ईयर वाज 1953, बट सर एडमंड हिलरी वाज बोर्न ऑन टुडेज डेट व्हिच वाज द 20th ऑफ जुलाई इन द ईयर 1990 in Auckland, New Zealand, somebody who is known in history as the first climber to the Mount Everest. You're listening to your evening drive time show. Agar aap logon ka relationship kisi ka kharab chal raha hai na, koi aapka purana pyar bichhad gaya hai, to main ek solution deta hu. Agar aapka purana pyar bichhad gaya hai to pehle to dil ko bolna hai ki dil tu ullu ka patta hai, aur dusra kya karna hai, chai hai na chai, usme gol gappe daba ke khane hai, बरकत आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। जैसे निर्मल बाबा कहते थे ना, काम में परेशानी है, गुलाब जामुन खाने शुरू कर दो, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह चाय में गोलगप्पे डुबाओ, खाओ, खोया हुआ प्यार वापस पाओ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
3: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
7: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: हे मैप्स, टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर।
11: कैलकुलेटिंग राउट, रीराउटिंग, रीराउटिंग।
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can